सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 18, तदनुसार 8 जून सन 2026। इस समय सुबह की ठीक 5:59 हो रहे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के ठीक 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित है। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम. नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किसान भाई बहनों को जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बातें होंगी एक ऐसी सब्जी की जो हर रसोई की शान है और आप सभी किसान भाई बहनों की जेब भी भरती है। वह फसल है भिंडी। ये साल भर बिकती है, जल्द तैयार होती है और 45 दिन में कमाई भी शुरू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं भिंडी की सफल खेती के वो 5 मूल मंत्र क्या है जिसे बेचकर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। पहला है जमीन और समय। गर्म धरती भिंडी की बस्ती। भिंडी को गर्म मौसम चाहिए। झारखंड में बुआई के 3 समय हैं, जायद, खरीफ और रबी। जायद में फरवरी मार्च का महीना सबसे ज़्यादा मुनाफा देता है, खरीफ में जून जुलाई का महीना जो कि बरसात वाली होती है ज़्यादा मुनाफा देता है, और रबी में सितंबर अक्टूबर का महीना जो सर्दी वाला महीना होता है वो भी ज़्यादा कमाई देकर जाता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो जमीन बलुआ दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। पानी भरने वाली मिट्टी में भिंडी सड़ जाती है, इसलिए पानी भरने वाली मिट्टी नहीं चाहिए। खेत को 2 से 3 बार जोतकर भुरभुरा कर देना चाहिए। किस्म और बीज क्या क्या होनी चाहिए अब इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि बीज सही तो भिंडी सही। 1 एकड़ के लिए 8 से 10 किलो बीज, अच्छी किस्में आर्का अनामिका, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, VRO6, ये बहुत महत्वपूर्ण किस्में मानी जाती हैं और ये पीला मोजेक वायरस से आसानी से लड़ जाती हैं। बोने से पहले बीज को 12 घंटे पानी में जरूर भिगो देना चाहिए, फिर छाया में सुखा देना चाहिए। अंकुरण 100% होता है और 4 से 5 दिन में जल्दी ये निकलने लग जाती है। बुआई और दूरी क्या होनी चाहिए? कहते हैं कि हवा खेलेगी तो भिंडी झूमेगी। लाइन से इसकी बुआई करनी चाहिए, लाइन से लाइन 45 सेंटीमीटर, पौधा से पौधा 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर इसको बोना चाहिए और हर जगह 2 से 2 बीज जरूर डालना चाहिए, बाद में कमजोर वाला निकाल देना चाहिए। चौथा है खाद पानी। कहते हैं थोड़ा दो, बार बार दो। बुआई के समय 1 एकड़ में 40 किलो DAP, 20 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास डालना चाहिए। बाकी यूरिया 20 किलो डालना चाहिए पहली तुड़ाई के बाद और हर बार थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। गर्मी में 6 से 7 दिनों पर और बरसात में जरूरत पड़ने पर डालनी चाहिए। ध्यान रहे जड़ के पास पानी ना रुके। फूल आने पर पानी की कमी मत होने दीजिए, नहीं तो फूल जो है वो झड़ जाएंगे। पांचवा है कीट रोग और तुड़ाई। कहते हैं समय पर तोड़ो और दाम अच्छा पाओ। पीला मोजिक वायरस भिंडी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पत्ते पीले, हरे और चित्तीदार हो जाते हैं। इलाज क्या है? तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए एमीडा क्लोप्रीड 0.5 ml प्रति लीटर पानी में छिड़क देना होगा और 15 दिन के अंतराल पर हर बार छिड़कना होगा। तेला और फल छेदक कीट भी लगते हैं इसमें। नीम का काढ़ा या क्विनलोकॉस दवा काम इसमें आती है और बोने के 40 से 45 दिन बाद आप भिंडी की तुड़ाई शुरू कर सकते हैं। भिंडी को रोज या 1 दिन छोड़कर तोड़ना चाहिए। सुबह सुबह तुड़ाई करने से ताजगी भी बनी रहती है। और आखिरी सलाह क्या है कि भिंडी की फसल 2 से 3 महीनों में तैयार हो जाती है। 1 एकड़ से 40 से 60 क्विंटल तक पैदावार आप ले सकते हैं। जायद वाली भिंडी में भाव भी अच्छा मिलता है और 30 से 50 रुपए किलो भी बिक जाता है। याद रखें मित्रों, साफ खेत, सही दूरी, समय पर तुड़ाई, भिंडी देगी भरपूर कमाई। भिंडी की खेती, इसी विषय पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। आप सभी कृषक मित्रों को पुनः एक बार जोहार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।
1: भिंडी की खेती, इस विषय पर आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें के तहत ये वार्ता और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यही संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:15 हुए हैं और अब डीजे सुनिए आज का चिंतन। श्री रामचरित मानस के अनुसार कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अर्थात ये विश्व कर्म प्रधान है, जो व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप फल भी मिलता है। जिसका मूल ठीक नहीं उस पर फूल भी कभी नहीं आएगा। इस सूत्र को अगर हम हमेशा याद रखें तो आध्यात्मिक यात्रा में आगे तक जा सकते हैं। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसके तहत आइए सबसे पहले सुने देश वंदना।

संवेद स्वरों में आप सुन रहे थे देश वंदना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना में आइए अब सुने भजन अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल, हरिहरन, सोनू निगम, लखवीर सिंह लखा, विनोद राठौर और बाबला मेहता की आवाजों में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना में आप सुन रहे थे भजन। आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल, हरिहरन, सोनू निगम, लखवीर सिंह लखा, विनोद राठौर, देवाशीष और बाबला मेहता। और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के ठीक 6:50 हो रहे हैं और अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

0: रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के ठीक 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और

0: निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव पर बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ।

आइए अब आपको बता दें हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हमारे इसी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी ठीक 7:10 पर जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम जरा सुनिए आप सुन सकते हैं। आज का विषय है आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर। प्रतिभागी होंगे सत्य प्रकाश, रमाशंकर शर्मा, महावीर अग्रवाल, चिन्मय महतो, विनोद कुमार, नवनीत कुमार सिंह और प्रिया सिंह। सुबह 7:20 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आज सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत। कलाकार होंगे सर्वजीत यादव, अनुज और साथी। बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि में आज हम आपको सुनवाएंगे तापसी करंजय की आवाज में नजरुल गीत। समय होगा 7:35। कब्जियत की समस्या और समाधान इस विषय पर बतलाएंगे हमें डॉक्टर अनिल कुमार। उनसे बातचीत करेंगे राजेश कुमार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत सुबह ठीक 7:50 पर। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात का समय होता है 8:00। 8:15 पर आप रोजाना सुनते हैं मॉर्निंग न्यूज और ठीक 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। सुबह 8:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे और सुबह 9:05 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरंजना। इसके अंतर्गत आज का ये विशेष आकर्षण है एक ही संगीतकार में आज सुनिएगा हिमेश रेशमिया के संगीतबद्ध किए गीतों को। नौ पर शास्त्रीय संगीत के आज के कलाकार होंगे पंडित अजय पोहनकर। सुनिएगा ख्याल गायन, राग होगा बिलास खानी तोड़ी और ठुमरी। 1 बार फिर से आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का 10:20 से।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। इस समय सुबह के ठीक 7:10 होने वाले हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी
1: जरा सुनिए।
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम जरा सुनिए आज के इस अंक में हम बातें करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर के बारे में। जी हाँ, 8 जून 1936 को शुरू हुआ यह सफर 2026 में 90 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, हमने लोगों के बीच जाकर जाना, तो आइए सुनते हैं हमारी और उनकी बातचीत पर आधारित यह कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी हमारे साथ पर्यावरणविद सत्य प्रकाश जी हैं, जो रेडियो बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक जो है ये रेडियो सुनते हैं। आइए इन जानते हैं इनसे, इन्हीं के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में और हमारे आकाशवाणी के प्रसारण के बारे में।
4: आकाशवाणी के प्रसारण के संबंध में बहुत सी दिलचस्प और वाक्य हमारे जीवन

0: आकाशवाणी प्रारंभ हुई थी और 90 वर्ष इसके लिए मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। निरंतर देश को एक संदेश देते चले आ रहे हैं। ये अलग बात है कि आज परिवेश बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। आज हम फ्रैक्शन ऑफ मिनट में हम हर चीज मोबाइल के माध्यम से सुन लेते हैं, लेकिन आकाशवाणी का महत्व कभी खत्म नहीं होता रहा। रिमोट से क्षेत्रों में जब हम गाँव में जाते हैं तो रेडियो को ही प्रमुखता से सुना जाता रहा है, चाहे वो कॉमेंट्री हो। कमेंट्री भी हम लोग बचपन में जब 1970-80 के दशक में और वर्ल्ड कप जब होता था तो हम लोग बेसब्री से इंतजार करते थे कमेंट्री सुनने का, वो बहुत ही आनंददायक क्षण रहता था। एक बार फिर से आकाशवाणी के पूरे टीम को, ऑल इंडिया रेडियो के सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों को, जिन्होंने अथक प्रयास करके 90 वर्ष पूर्ण किया है, आने वाले 10 वर्षों में शताब्दी वर्ष पूर्ण करेंगे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ रमाशंकर शर्मा जी हैं, जो बहुत पुराने समय से रेडियो को सुनते आ रहे हैं और अभी भी इनका जो साथी है वो रेडियो ही है और हर पल इनके साथ ही रेडियो रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर के बारे में?
2: ये तो जीवन का साथ, जीवन साथी जैसा है।
1: हाँ हाँ,
2: जब भी हम कहीं, जब भी कभी उदास होते हैं या किसी की याद आती है,
1: हाँ हाँ,
2: समय ये दिल भुलाने का बहुत बड़ा अच्छा काम करता है। लगता ही नहीं है कि अकेले हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या परिवर्तन आप देखते हैं 90 वर्षों में?
2: काफी परिवर्तन हुआ है पहले से।
1: हाँ हाँ,
2: पहले तो हम लोग कांटा वाला रेडियो था।
1: हाँ हाँ,
2: पड़ता था।
1: हाँ,
2: आजकल बटन दबाने से शुरू हो जाता है, ये इजी हो गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मोबाइल में भी सुना जा सकता है।
1: तो
2: काफी मैंने करीबी और बढ़ गया है।
1: मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि मीडियम वेव से हम लोग एफएम की ओर आ गए हैं और तकनीक में बहुत बदलाव हुआ है। और जो आपका कार्यक्रम, क्या क्या पसंद आता है?
2: कार्यक्रम तो सभी पसंद आता है, उसमें कोई भी पसंद, मैंने कार्यक्रम को छांटा नहीं जा सकता।
1: विविध भारती के सारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
2: कार्यक्रम एक से बढ़कर एक है, सभी तरह के श्रोताओं का ख्याल रखा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है।
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ चिन्मय महतो जी हैं, जो रेडियो प्रेमी हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनके पास बहुत पुराना से लेकर के आधुनिक समय तक का जो जो रेडियो है वो सारे रेडियो इनके साथ रहते हैं। चिन्मय महतो जी, आकाशवाणी ने 1936 में अपना सफर शुरू किया था और अभी 2026 चल रहा है, 90 वर्षों का सफर हमने पूरा किया है, तो क्या कुछ उतार चढ़ाव रहा, क्या कुछ तकनीक का बदलाव रहा, लिसनर्स को कैसा लगता है, ये सब सारी बातों को आप साझा कीजिए।
3: जी, आवाज के दुनिया के दोस्तों नमस्कार। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, यानी हमारे एक जो इतिहास बन चुका है आकाशवाणी, देश और पूरे विश्व में अपना पहचान जो बना के रखा, भरपूर आनंद और मनोरंजक पूर्व जो कार्यक्रम पेश किया, आज 90 वर्ष पूरा हो चुका है। इस रूप में हमारे बहुत ही बढ़ चढ़ के कार्यक्रम, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया, और 1936 का जो एक भारतीय राज्य प्रसारण का नाम था, इसका आधिकारिक रूप से परिवर्तित कर इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम रखा गया, और आकाशवाणी से प्रसारित सभी कार्यक्रम जो है बहुत ही मनोरंजक होता है, ज्ञानवर्धक होता है, और यहाँ के जितने भी उद्घोषक भाई बहनों की आवाज जो है बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय होते हैं। हम इस आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम, आकाशवाणी जमशेदपुर से जब से परीक्षण प्रसारण आरम्भ हुआ तभी से कार्यक्रम को सुनता आ रहा हूँ और हर कार्यक्रम में मैं भाग लेता आ रहा हूँ। तो देखा जाए तो आकाशवाणी जमशेदपुर और आकाशवाणी का कार्यक्रम पूरे विश्व में अभी चर्चित का विषय बन चुका है, क्योंकि 90 साल का जो सफर है ये कम नहीं है, और बहुत ही सभी को ये कार्यक्रम पेश करते हुए सभी को खुश किया है। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया, और ये आकाशवाणी नाम जो बहुत ही सुटेबल लगा, जिसका अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज, तो आकाशवाणी एक बेतार का तरंग है, तो आकाश आकाशवाणी एक इतिहास बन चुका है। हम इसे बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि आकाशवाणी अमर रहे।

0: Давай.
1: आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम महावीर अग्रवाल है। मैं शुरू से रेडियो वगैरह का काम कर रहा हूँ और दिन भर रेडियो मेरे यहाँ बजते रहता है। वीत भारती वगैरह सिलोन के टाइम में पहले सिलोन बिनाका गीत माला वगैरह बजता था, अभी वीत भारती बराबर बजता है। सारे प्रोग्राम सुबह से रात तक मैं सुनता हूँ और लोगों को रेडियो बना के देता हूँ, उन्हें भी सुनाता हूँ, अभी तक वही सब कर रहा हूँ।
1: अच्छा, 1936 से शुरू हुआ आकाशवाणी का ये सफर आज 90 वर्ष का हो गया है, तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या परिवर्तन हुआ सब बताएं।
2: बहुत ही अच्छा लगता है, एक से एक प्रोग्राम आता है, नए नए प्रोग्राम भी आते हैं, उनको भी मैं सुनता हूँ, लोगों को भी सुनाता हूँ, सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं।
1: और बेसिकली आप आकाशवाणी के दो चैनल है, दोनों में कौन सबसे ज्यादा आपको पसंद आता है, विविध भारती या प्राइमरी चैनल?
2: दोनों ही चैनल सुनता हूँ, विविध भारती ज्यादा सुनता हूँ, उसके बाद प्राइमरी भी सुनता हूँ।
1: प्राइमरी में कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं?
2: कृषि जगत वगैरह,
1: इस टाइप कृषि जगत आप सुनते हैं?
2: हाँ सुनते हैं।
1: आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं,
2: लेकिन अच्छा लगता है तो सुन लेते हैं।
1: और बेसिकली और बहुत बहुत से अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी आते हैं, हेलो आपकी फरमाइश भी आती है, आप उसको सुनते हैं कि नहीं, फोन किए कि नहीं कभी?
2: नहीं फोन तो नहीं किए हैं, नंबर लिख के रखे हैं, हेलो फरमाइश बराबर सुनते हैं। और भी इस टाइप के जो प्रोग्राम आते हैं सारे सुनते हैं, सखी सहेली वगैरह जितने आते हैं प्रोग्राम सभी सुनते हैं।
1: मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जब ये सफर शुरू हुआ था तो उस समय FM नहीं था और अभी FM का जमाना है और रेडियो की टेक्नोलॉजी बहुत बदली है, तो आप एज ए टेक्नीशियन कैसा फील करते हैं?
2: पहले से अभी अच्छा हो गया इलेक्ट्रॉनिक आने से। मैं बल्ब रेडियो जब चलता था उस समय से काम कर रहा हूँ, लोगों को सुनाता हूँ, सारे टाइप के रेडियो बनाता था।
1: अच्छा।
2: उस टाइम FM नहीं था, लेकिन फिर भी बैटरी वाले रेडियो, इलेक्ट्रिक रेडियो सारे का काम करता था और भीड़ लगे रहती थी, विविध भारती सुनना है, किसी बिना का गीतमाला सुनना है, तो मैं सबकी सेवा में लगे रहता था, अपनी दुकान चलाता था, आज भी चला रहा हूँ।
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं जो चाईबासा में रहते हैं और हमारे बहुत पुराने लिसनर्स हैं। विनोद जी, आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार, आकाशवाणी रेडियो के 90 साल पुराने पे बहुत बहुत बधाई।
1: चलिए धन्यवाद आपको। कैसा आपको लगा, आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं और अभी जो आकाशवाणी का प्रसारण हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है?
3: अच्छा लग रहा है,
1: परिवर्तन है। पहले हम लोग मीडियम वेव पर आते थे, फिर FM हो गए और अभी तो ग्लोबल प्रसारण पे आ गए, न्यूज ऑन एयर प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो आप कौन सा माध्यम पे हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं?
3: अभी तो हम लोग कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, जैसे FM प्रोग्राम आती है, रजनीगंधा हुआ या आपकी पसंद हुआ, इन सब में हम लोग शामिल होते रहते हैं।
1: अच्छा,
3: और ऐसे तो हम रेडियो से 1972 से जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा,
3: पहले हम सिलोन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से जुड़े थे।
1: अच्छा,
3: जब हमारी 12 साल उम्र थी।
1: 12 साल?
3: हाँ 12 साल
1: उम्र से सुन रहे हैं,
3: रेडियो सुन रहे हैं।
1: इमेजिनेशन करना मतलब गजब है अपने आप में, 12 साल की उम्र से आप रेडियो सुन रहे हैं, आकाशवाणी को सुन रहे हैं।
3: हाँ,
1: और अभी उम्र के इस पड़ाव पर आ गए हैं कि
3: अभी हमारी उम्र 67 साल है।
1: 67 साल
3: जी,
1: 12 साल से 67 साल का जो ये सफर है, इसमें आकाशवाणी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आकाशवाणी ने तकनीक के मामले में भी बहुत तरक्की की है।
3: तरक्की तो,
1: हाँ
3: किसी मतलब, और हम लोग का कोई नशा नहीं था, बस ये रेडियो का नशा।
1: रेडियो का नशा अच्छा है कि आपको सूचना भी मिल जाती, जानकारी भी मिल जाती और मनोरंजन भी हो जाता है।
3: आज भी देखिए मोबाइल में जितना भी लाइव प्रोग्राम आता है, मोबाइल से लाइव प्रोग्राम आता है, सब में हम शामिल होते हैं,
1: सब में
3: टोटल में शामिल होते हैं।
1: चलिए, बहुत अपने आप में उपलब्धि है ये। श्रोताओं, हमारे साथ हैं एक प्राध्यापक जिनका नाम नवनीत कुमार सिंह है, आइए जानते हैं कि ये आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर क्या कहना चाहते हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: क्या कुछ कहना चाहेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर?
0: आकाशवाणी का मैं बचपन

0: से श्रोता रहा हूँ। जिस समय ग्रामीण क्षेत्र में कोई सूचना तंत्र का साधन नहीं था,
1: हाँ
0: तो एक आकाशवाणी ही एक माध्यम था जिससे हम लोग सूचना का आदान प्रदान करते थे, मनोरंजन करते थे। और आज 90 वर्ष आकाशवाणी का पूर्ण हो रहा है। आकाशवाणी की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने दशकों से देशवासियों तक समाचार, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि भारत की विविधता, एकता और सांस्कृतिक विरासत का सशक्त स्वर है। इस विशेष अवसर पर हम आकाशवाणी के सभी कर्मियों एवं श्रोताओं को बधाई देते हैं तथा इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आकाशवाणी यूं ही जन जन तक ज्ञान, सूचना और प्रेरणा का संदेश पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं प्रिया सिंह, आज आकाशवाणी के 90 वर्षों का जो महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे देश में, उसके लिए मैं एक आकाशवाणी को छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा की आवाज है। यह वह माध्यम है जिसने दशकों से देश के करोड़ों नागरिकों को सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन से जोड़ने का महान कार्य किया है। बदलते समय और तकनीकी क्रांति के बावजूद आकाशवाणी की विश्वसनीयता, लोकप्रियता और सामाजिक उपयोगिता आज भी बनी हुई है। आकाशवाणी के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश यह भी है, जन जन की आवाज, राष्ट्र का विश्वास, आकाशवाणी हमारे साथ। धन्यवाद।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर पर जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित था यह कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जरा सुनिए कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विवेक आदित्य, और अब इस कार्यक्रम की प्रस्तुति से अनिमेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
4: जरा सुनिए,
5: जरा सुनिए,
4: जरा सुनिए।
5: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
4: जरा सुनिए।
6: अभी आप सुन रहे थे जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम जरा सुनिए। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। इस समय सुबह के ठीक 7:25 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए भोजपुरी लोकगीत, कलाकार है वीरेंद्र कुमार उपाध्याय।
7: कहावा फूलेला

लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं वीरेंद्र कुमार उपाध्याय की आवाज में भोजपुरी लोकगीत।

0: वीरेंद्र कुमार उपाध्याय की आवाज़ में आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, और इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 7:35 होने वाले हैं और अब प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। इसके अंतर्गत आज सुनिए तापसी करंजय की आवाज में नजरूल गीत।

बांग्ला गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि में आप सुन रहे थे तापसी करण जय की आवाज़ में नजरुल गीती, और इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि अब यहीं संपन्न हुआ।

0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। सुबह के ठीक 7:50 हुए हैं और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल कुमार हमें बतला रहे हैं कब्जियत की समस्या और समाधान इस विषय पर, और उनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार। आइए सुने।
1: श्रोताओं, आमतौर पर लोग कब्जियत की शिकायत करते हैं और कब्जियत होने के कारण उसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है। कब्जियत की समस्या से हम कैसे बचें, क्या इसका समाधान हो सकता है, स्वास्थ्य चर्चा की आज के अंक में बातें इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि कब्जियत होने का क्या मुख्य कारण होता है।
2: कब्जियत होने के आज के दिन में जो सबसे बड़े कारण है, पहला कारण वो है कि गलत दिनचर्या लोगों का, न खाने का कोई टाइम है, न सोने का कोई टाइम है, कोई रूटीन नहीं है। नंबर दो, कम रेशा युक्त भोजन करना,
1: फाइबर जिसमें कम हो,
2: जिसमें फाइबर कम है वो लोग ज्यादा आजकल पसंद कर रहे हैं।
1: फास्ट
2: फूड ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा चिकना भोजन खाने से, फास्ट फूड खाने से, ये तो कब्जियत का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, शरीर में पानी का कमी होना,
1: जरूरत के हिसाब से पानी भी,
2: बिल्कुल शरीर में पानी का आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मिनिमम 3-4 लीटर पानी हर व्यक्ति को रोज पीना चाहिए। तो ट्रेंड क्या चला हुआ है कि खाएंगे अधिक, पानी कम पिएंगे।
1: अच्छा,
2: इसलिए खाना कम, पानी ज्यादा, कब्जियत से बचने का सबसे बड़ा मंत्र है। खाने का सिद्धांत यही होना चाहिए कि कम खाएं और कुछ देर के बाद ज्यादा पानी पिए। सबसे बड़ा कारण है कि लोग पैदल नहीं चलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। इन्हीं सब कारणों से आज के दिन में कब्जियत से ज्यादा लोग ग्रसित हो रहे हैं। कब्जियत एक ऐसी बीमारी है जिससे आज के इस भाग दौड़ के जिंदगी में लगभग 90% लोग इसके ग्रसित हैं, शिकार हैं। और यह एक ऐसी बीमारी भी है जिसको 75-80% तक इलाज स्वयं किया जा सकता है। अगर अपनी दिनचर्या में कुछ सुधार कर लिया जाए तो इसका इलाज हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है।
1: तो कब्जियत अगर किसी को है तो शरीर पर क्या लक्षण दिखते हैं या फिर क्या उसके परिणाम हो सकते हैं बाद में आगे चलकर? तो
2: जो व्यक्ति कब्जियत के शिकार हैं उनको हमेशा थकान लगने की शिकायत रहेगी, पेट में गैस होते रहता है, यहाँ तक कि गैस होने से पेट में दर्द भी रहता है।
1: जी,
2: क्योंकि जो मल को बाहर निकल जाना है वो मल जब पेट में रहेगा तो गैस क्रिएट करेगा।
1: जी बिल्कुल।
2: और अगर जब उसके हैबिचुएटेड हो जाएंगे कंस्टिपेशन के, तो वजन बढ़ने की भी समस्या इसके कारण होती है। बालों का झड़ना एक आम समस्या है जिसके पीछे कब्जियत एक बहुत बड़ा कारण है।
1: अच्छा, मैंने कब्जियत को हम बाल झड़ने का एक कारण,
2: बिल्कुल बिल्कुल, पेट साफ नहीं होने से बाल झड़ता ही है।
1: अच्छा, तो हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई लगातार कब्जियत से ग्रसित है तो पेट संबंधी काफी सारी बीमारियों का सामना उसे करना पड़ता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो किस तरह की बीमारियां हो सकती है?
2: बीमारियों तो देखिए, सबसे बड़ा अगर कंस्टिपेशन ज्यादा उनको रहेगा तो फ्यूचर में पेट की बीमारी, अल्सर ज्यादा चांस रहेगा उसमें, आइदर गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर, ये अल्सर होने का ज्यादा शिकायत रहेगा।
1: तो कब्जियत से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं?
2: कब्जियत से बचने के लिए अपने दिनचर्या में बदलाव लाएं, उसके बाद संतुलित भोजन करना चाहिए, भोजन करने के 10-15 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए और पानी का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, रेशेदार भोजन करिए, ज्यादा चिकना एवं फास्ट फूड से दूर रहिए, चीनी के बजाय गुड़ का उपयोग कीजिए, दिन में भोजन में दही का प्रयोग करना आवश्यक है क्योंकि दही में गुड़ बैक्टीरिया पाया जाता है।
1: जी,
2: योगा करना, एक्सरसाइज करना, शारीरिक श्रम करना, इन सब उपायों से कब्जियत से बचा जा सकता है। रात को सोते समय एक नियम बना ले, कब्जियत जिसको होता है उसको आधा गिलास गर्म पानी, आधा गिलास सुसुम दूध पिए।
1: आपने कहा कि फाइबर युक्त खाना जरूरी है, किस तरह के खाने को हम बोल सकते हैं कि उसमें फाइबर है?
2: सबसे ज्यादा फाइबर मोटे अनाज में पाया जाता है, मोटा अनाज जैसे मकई हो गया, चना हो गया, हरा साग सब्जी हो गया।
1: अच्छा,
2: उसमें फाइबर ज्यादा रहता है। मैदा बिल्कुल नहीं खाना है।
1: अच्छा, जो कि आजकल लोग ज्यादा,
2: और गेहूं का रोटी, आटा का रोटी खाते हैं लोग तो उसको चाल के खाते हैं, उसका भूसी निकाल लेते हैं, भूसी युक्त रोटी बनाना है आटा से।
1: अच्छा अच्छा। तो श्रोताओं, आपने सुना कि अगर कब्जियत से बचना है तो सबसे मुख्य कार्य ये है कि आपको अपने खाना पीना जो है आपका उसमें सुधार लाना होगा, साथ ही एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने जो बताया, जिस तरह का खाने के बारे में डॉक्टर साहब ने चर्चा की, यदि आप अपने खाने में उस तरह का बदलाव लाएंगे तो निश्चित तौर पर आप कब्जियत से बचेंगे और कब्जियत से होने वाली जो समस्या है उससे भी आप बचे रह सकते हैं और पूर्ण रूपेण आप स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कब्जियत की समस्या और समाधान, इस विषय पर बतला रहे थे हमें डॉक्टर अनिल कुमार और उनसे बातचीत की राजेश कुमार ने। और इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न हुआ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं।
1: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बतला दें, हमारी इसी सभा में सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के आज के कलाकार होंगे पंडित अजय पोहनकर। सुनिएगा ख्याल गायन, राग होगा बिलास खानी तोड़ी। हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों में दिन में 11:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। दोपहर 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद नजाकत अली खान और उस्ताद साल अली खान का ख्याल गायन, राग होगा पूर्वी और मधुमंती।

दिन में 3 बजे सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज और ठीक 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के

0: अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
7: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
5: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
8: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का

0: खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महागठबंधन विधायक दल की हुई बैठक। दोनों सीटों पर जीत का दावा। भाजपा ने भी एनडीए विधायकों की बैठक में बनाई रणनीति। 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में होगी आयोजित। देवघर में श्रावणी मेले से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वारदात की बना रहे थे योजना। झारखंड में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज। मौसम विभाग ने 14 जून तक कई जिलों में गर्जन बारिश वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट किया जारी। और बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। राज्यभर में करीब 200 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। अब तक 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और परिमल नाथवानी के साथ गौरव वल्लभ शामिल हैं। 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन परिणाम आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर रांची में सत्तारूढ़ गठबंधन के मंत्रियों और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान चुनावी रणनीति और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए गठबंधन के दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से एकजुट होकर चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने तथा संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने का आह्वान किया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दोनों सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत का दावा किया।
1: महागठबंधन की इस बैठक में, जिसमें तमाम घटक दलों के लोग, हमारे गठबंधन के नेता मौजूद थे और उन तस्वीरों में हमारे दोनों प्रत्याशी साथ में थे, यह कहने के लिए बहुत काफ़ी है कि झारखंड की आगामी राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी होंगे।
0: बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूरा गठबंधन एकजुट है।
2: दोनों प्रत्याशी थे गठबंधन के, प्रणव जी और बैद्यनाथ राम जी। हम सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, सारे विधायक एक साथ वहां जाएंगे। और आज की तारीख में इतना कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, माले बाम दल, पूरा गठबंधन एकजुट है।
0: राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी के आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं कल देर शाम प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें विधायक रागिनी सिंह, पूर्णिमा दास साहू समेत करीब 10 विधायक शामिल हुए। बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। तय हुआ कि आज सुबह विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास पर विधायकों की चाय पर चर्चा होगी। इसके बाद विधायक विधानसभा के लिए रवाना होंगे। संवाददाताओं से बातचीत में विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि सबकी सहमति से प्रत्याशी का चुनाव होगा।
3: देखिए, प्रत्याशी जो भी होंगे बहुत जल्द आप सबके सामने होंगे और सबके सहमति से ही होंगे। देखिए, अब कौन है ये तो ऊपर में तय होगा। हमारे 81 मतदाता हैं, जिसे भी चुनेंगे बहुत अच्छा सोच समझ के।
0: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य जारी है। रांची में विशेष शिविर लगाकर वोटर लिस्ट का एसआईआर किया जा रहा है। बीएलओ ने बताया कि 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर मैपिंग की जा रही है।
4: यदि उनका नाम होगा 2003 के लिस्ट में तो स्वयं के नाम से, अगर उनका उस समय 2003 में वोटर आईडी नहीं बना होगा तो उनका माता पिता या तो उनका दादा दादी, उनके नाम से मैपिंग होगा।
0: रांची के पंडरा क्षेत्र में अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने के आरोप में 3 लोगों को पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन का मामला सामने आया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लिंग निर्धारण और अवैध अल्ट्रासाउंड गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। करगिल युद्ध में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के वीर जवान विद्यानंद सिंह का 27वां शहादत दिवस हजारीबाग के कारगिल पॉइंट में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहीद की वीरता को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि विद्यानंद सिंह ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ते हुए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। उन्होंने भारतीय सेना के अनुशासन की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एक रिपोर्ट।
5: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रांची में विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर नवीन पुलिस केंद्र में PCR और हाईवे पेट्रोल कर्मियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपराध नियंत्रण, अवैध अड्डाबाजी और नशे के कारोबारी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, संवेदनशील स्थलों की निगरानी तथा डायल 112 से प्राप्त सूचनाओं के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस ने एक वाहन से 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। खूंटी जिले के डोंगरा पंदन टोली बागीचा मैदान में एदेल संगा 22 पढ़ा जत्रा का भव्य आयोजन हुआ। आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में सामूहिक नृत्य के साथ लोग जत्रा का आनंद लेते नजर आए। मौजूद नेताओं ने मंच से एकता, एकजुटता और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। मौसम। झारखंड में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग, धनबाद समेत कई जिलों में आज से 14 जून तक गर्जन, बारिश और वज्रपात तथा तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड राज्य कुश्ती संघ और बोकारो जिला कुश्ती संघ द्वारा संयुक्त रूप से बोकारो में सीनियर राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से 220 से अधिक पहलवान, प्रशिक्षक और अधिकारी भाग ले रहे हैं। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग की स्पर्धाओं में 30 स्वर्ण, 30 रजत और 60 कांस्य पदकों के लिए मुकाबले हो रहे हैं।
6: 2 दिवसीय जो प्रतियोगिता है, इससे हमारे बोकारो के सभी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, चास उपनगर में, विस्थापित क्षेत्र में कुश्ती के प्रति लोगों में एक उत्साह का वर्धन होगा। कुश्ती भारत की परंपरागत खेल है।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों और मंथन के दौर में खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव, राजनीतिक सरगर्मी चरम पर, आज नामांकन का आखिरी दिन। हिंदुस्तान ने लिखा है, भाजपा ने नहीं दिया प्रत्याशी पर जीत का दावा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर दिल्ली लौटे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दैनिक जागरण लिखता है, SC ST एक्ट के लंबित मामलों पर पुलिस मुख्यालय सख्त, मिशन मोड में निपटारे का आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महागठबंधन विधायक दल की हुई बैठक, दोनों सीटों पर जीत का दावा। भाजपा ने भी एनडीए विधायकों की बैठक में बनाई रणनीति। 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में होगी परीक्षा आयोजित। देवघर में श्रावणी मेले से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वारदात की बना रहे थे योजना। झारखंड में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज। मौसम विभाग ने 14 जून तक कई जिलों में गर्जन बारिश वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट किया जारी। और बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। राज्य भर से करीब 200 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
8: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी जमशेदपुर से आप प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज यानी 8 जून का दिन हमारे लिए है बेहद खास, क्योंकि आज हम सब मिलकर मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष। जी हाँ, आज ही के दिन 8 जून 1936 को जब भारतीय प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिला, तब से लेकर आज आकाशवाणी के अदृश्य तरंगों के माध्यम से लाखों करोड़ों दिलों तक आवाज पहुंचने का सफर जारी है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में आकाशवाणी यानी आकाश से आने वाली वो दिव्य आवाज़ जो आज भी हर भारतीय के घर घर में गूंज रही है।

दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। आज आकाशवाणी के कई स्टेशन पूरे देश को कवर करते हैं। 23 भाषाओं और 146 बोलियों के साथ आकाशवाणी की आवाज पहुंचती है, गांव हो या शहर, पहाड़ हो या मैदान, हर कोने तक। जी हां, आकाशवाणी जो शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के रूप में हमारे जीवन को हर पल रंगीन और समृद्ध बनाता है। वैसे रेडियो सिर्फ एक यंत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा साथी है जो हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ा होता है। ये वो शिक्षक है जो हमें नई राह दिखाता है, एक समाचार वाहक है जो हमें दुनिया से जोड़े रखता है, साथ ही एक मनोरंजक साथी है जो हमारे चेहरों पर प्रतिदिन मुस्कान बिखेरता है।

0: आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें, जिन फिल्मों के गीतों को आपने सुना वे थे ट्यूबलाइट और युवराज। आवाज़ थी कमाल खान, अमित मिश्रा, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और साथियों की। गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य और गुलजार ने और संगीत तैयार किया प्रीतम और एआर रहमान ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
2: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। बहुजन हिताय आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलीपींस के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर जनरल सेंटोस शहर से 13 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और उत्तरी मुलुक प्रांतों में भी लोगों ने इस भूकंप के झटके महसूस किए। ताइवान, जापान, गुआम, पापुआ न्यू गिनी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम संरचना। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम में बात एक भारतीय संगीत निर्देशक, पार्श्व गायक और अभिनेता हिमेश रेशमिया की, जिन्होंने अपनी अद्वितीय संगीत प्रतिभा के कारण उस मुकाम को हासिल किया जिसे पाने का ख्वाब हर एक कलाकार का होता है। जी हाँ, आज संरचना कार्यक्रम की महफिल हमने सजाई है संगीतकार हिमेश रेशमिया के संगीतबद्ध गीतों से।

श्रोता संगीतकार हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को गुजरात में हुआ था। जब वो महज 11 साल के थे, उन्होंने संगीत में अपना करियर बनाने की सोची और उसकी शुरुआत उसने दूरदर्शन अहमदाबाद से की।

श्रोताओं, संगीतकार हिमेश रेशमिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से की थी और ये फिल्म काफ़ी हिट हुई और इस फिल्म के बाद उन्होंने सलमान की कई फिल्मों में अपना संगीत दिया जो हमेशा सुपरहिट रहा। इसी फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

104 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना। और आज सुरंजना कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही संगीतकार हिमेश रेशमिया के संगीतबद्ध गीतों को। श्रद्धा संगीतकार हिमेश रेशमिया को बतौर संगीत निर्देशक सफलता फिल्म तेरे नाम से साल 2003 में मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए।

0: आज की संरचना कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें, जिन फिल्मों के गीतों को आपने सुनी वे थे अक्सर, प्यार किया तो डरना क्या, तेरे नाम और ऐतराज। आवाजें थी हिमेश रेशमिया, अदनान सामी, सुनिधि चौहान, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की। गीत लिखा समीर और सुधाकर शर्मा ने और संगीत तैयार किया हिमेश रेशमिया ने। और इसी के साथ आज की संरचना बस यहीं संपन्न हुई।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप हैं हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424

0: पर
1: 8700014242।
2: आकाशवाणी जमशेदपुर से अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन, राग है बिलास खानी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन, राग था बिलास खानी तोड़ी। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ठुमरी। कलाकार हैं पंडित अजय पोहनकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारम्भ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत शुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक

0: दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. West Bengal is set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPM Chair, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. National Health Authority and Government of West Bengal will sign a memorandum of understanding today for the implementation of ABPM Jai in the state. Prime Minister Narendra Modi today shared a Sanskrit Subhashitam, highlighting that achieving the welfare of all living beings by striking a balance with nature has been the core spirit of our culture. In a social media post, Prime Minister noted that with this comprehensive vision, India is continuously moving forward on the path of progress and prosperity today. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan and the downtrodden. He said the government has always been inspired by Antodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to the people. The National Testing Agency NTA has released the exam city intimation slip for the NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of this month. Our correspondent reports that registered candidates can now check their allotted exam city by logging into the official website using their application number and password. Akashvani is celebrating its 90 years today. This day on June 8, 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio. This red letter day marks a special moment in the cultural, information and broadcasting history of the country where a voice was born that would echo through generations. In Jammu and Kashmir, a heavy rush of devotees is being witnessed at the holy cave shrine of Sri Mata Vaishno Devi Ji in the Trikuta Hills of Riyasi district. Akashwani Jammu correspondent reports that the pilgrimage is continuing smoothly despite the large influx of pilgrims. Due to the heavy rush at the Bhavan, Yatra registration was temporarily suspended a few hours earlier on Saturday evening. However, the registration process resumed early Sunday morning, allowing devotees to continue their pilgrimage. The registration process for the pilgrimage was again suspended yesterday till 4 a.m. today due to the heavy influx of pilgrims arriving at the base camp in Katra. The decision was taken to regulate the movement of devotees and ensure smooth crowd management, as the shrine is witnessing an exceptionally large rush during the ongoing summer vacation season. Chinese President Xi Jinping is set to travel to Pyongyang today in his first visit in 7 years, a trip likely meant to reassert China's unique influence over North Korea in return for providing economic and political benefits. Indian equities opened sharply lower today, with benchmark indices falling 1% each amid escalating tensions in West Asia, rising crude oil prices and weak global cues. Sensex opened at 73,422, down over 800 points or 1.11%, while Nifty began the session at 23,081, declining 286 points or 1.22% at the early trade today. The India Meteorological Department, IMD, has said that certain regions of the country will experience rainfall as the monsoon progresses, while other areas will continue to endure heat wave-like conditions. Meanwhile, Weather Agency has said that coastal Andhra Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab and West Rajasthan will witness heat wave conditions at isolated places today. And in tennis, Germany's Alexander Zverev clinched his maiden Grand Slam, defeating Italy's Flavio Cobolli in a thrilling five-set final to win the French Open crown at Roland Garros. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Mukesh Kumar Bal. मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इजराइल पर मिसाइल हमले किए। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में आज तड़के 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरिवंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण

0: विस्फोटों की खबरें हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के इस्फहान में 3 विस्फोट हुए हैं।
1: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: इराक के शिया मिलिशिया कटाए हुए हिजबुल्ला ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों में शामिल होता है तो वे इराक और क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ये चेतावनी समूह ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलीपींस के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर जनरल सेंटोन्स शहर से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर आया। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और उत्तरी मुलुक प्रांतों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूटान में बीती रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। इससे किसी भी तरह के कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग आज उत्तर कोरिया की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये 7 वर्षों में पहली उत्तर कोरिया की यात्रा होगी। इस यात्रा से चीन का उत्तर कोरिया पर प्रभाव बढ़ेगा और चीन उत्तर कोरिया को आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
2: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अपने 2 दिन की यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। विदेशी विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बैठक का द्विपक्षीय संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दोनों देश अमेरिका के साथ अलग अलग टकरावों के मद्देनजर अपने पारंपरिक गठबंधन को पूरी तरह से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का आर्थिक व मुख्य राजनयिक समर्थक रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आर्मेनिया में संसदीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और मतगणना जारी है। आर्मेनिया के चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान लगभग 2000 मतदान केंद्रों पर हुआ, जहां 24 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी लगभग 57% वोटों के साथ आगे चल रही है। रूस समर्थक स्ट्रांग आर्मेनिया गठबंधन लगभग 21% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर और पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोर्चियान के नेतृत्व वाला आर्मेनिया गठबंधन लगभग 8% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये चुनाव वर्ष 2023 में अजरबैजान से आर्मेनिया की सैन्य हार के बाद पहला चुनाव है। नेपाल में कलिंग साहित्य महोत्सव का 4th संस्करण कल काठमांडू में संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय सीमाओं से परे बदलते विश्व में दक्षिण एशियाई साहित्य है। इस महोत्सव में नेपाल सहित पूरे दक्षिण एशिया के साहित्यकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने उपन्यास कारा के बारे में बताया। उन्होंने साहित्य को समाज, मानवीय अनुभवों और भावनाओं

का प्रतिबिंब बताया। कार्यक्रम में अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा, गायिका इला अरुण, लेखिका प्रतिभा रॉय, लेखक और फिल्म निर्माता राजशेखर, लेखक आचार्य प्रशांत और अन्य कई प्रमुख साहित्यिक हस्तियों ने शिरकत की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा भारतीय पहलवानों ने मंगोली में चल रहे उलान बतोर ओपन 2026 टूर्नामेंट में 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना सफल अभियान समाप्त किया। भारत की झोली में कुल 16 पदक आए, इनमें 8 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख स्तंभ। अप्रैल के युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में आज तड़के 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

आकाशवाणी जमशेदपुर से आप प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

विश्वात्मा फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, साधना सरगम की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा और धुन बनाई विजू शाह ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं। इंदिवर ने गीत लिखा है और धुन बनाई है राजेश रोशन ने, और फिल्म का नाम है करण अर्जुन।

104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब कार्यक्रम के लिए वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल हुआ पूरा। और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और दोस्तों, अब कार्यक्रम में बात एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री मॉडल की, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की। आज ही के दिन मैंगलुरु कर्नाटक में जन्मी शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग से की थी। उन्होंने साल 1993 में थ्रिलर फिल्म वाजीगर से बॉलीवुड में कदम रखा और कई फिल्मों में उनके काम को बहुत पसंद किया गया, साथ ही उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया। तो आइए, आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं उन्हीं के द्वारा अभिनीत मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गाना।

साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ में जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को सुर में ढाला संगीतकार जतिन ललित ने। और श्रोता, इसके पहले हमने आपको मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का गीत सुनवाया था कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। रानी मलिक थे गीतकार और संगीतकार थी अनु मलिक।

0: दिल से फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना। एआर रहमान, अनुपमा और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ों में गुलजार ने गीत लिखा और धुन बनाई एआर रहमान ने। और श्रोता, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो

0: स्टेशन का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत स्वागत। और आज आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों,

दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अपने साथ लेकर आया है गीत संगीत कुछ रोचक जानकारियों के साथ आज के दिन विशेष की बातें। तो अब वक्त को जाया न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम।

साथियों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून का नहीं लेकिन दिल से सबसे करीबी होता है। ये भरोसे, प्यार और बिना शर्त समर्थन का प्रतीक है। दोस्त हमारे जीवन को बहुत सारी हंसी, खुशियों और कभी ख़त्म ना होने वाली यादों से भर देते हैं। नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे के अवसर पर आज हमें इस अनमोल रिश्ते का जश्न मनाने और अपने दोस्तों को उनके प्यार और समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए धन्यवाद देने का अवसर देता है आज का ये दिन। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके हर सुख दुख में साथ खड़ा रहे हमेशा और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए। हर किसी की लाइफ में ऐसे दिन ज़रूर आते हैं जब सब कुछ सही नहीं होता। ऐसे में कई बार परिवार भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त एक अच्छा दोस्त ही होता है जो आपकी बातें सुनता है और आपको संभालता है। उनकी मौजूदगी से ही ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए।

दोस्तों, 8 जून 1936 इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और 1957 को ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम दिया गया। तारीख थी 8 जून की। जबकि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत को याद करते हुए हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए सुने ये गाना।

काई पोचे। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे श्रुति पाठक और दिव्य कुमार की आवाज़ों में। अमित त्रिवेदी का संगीत निर्देशन था और गीत लिखा था स्वानंद किरकिरे ने।

दोस्तों, हज़रत पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक और अंतिम पैगंबर थे। सऊदी अरब के मक्का में जन्मे मोहम्मद साहब ने एक ईश्वरवाद का संदेश दिया और समाज में फैली बुराइयों को मिटाकर एक नई व्यवस्था स्थापित की। उनके जन्म से पूर्व ही उनके पिता का देहांत हो गया था और छोटी उम्र में माता का भी साया उठ गया। उनका पालन पोषण उनके दादा और फिर चाचा अबू तालिब ने किया। युवावस्था में वे एक चरवाहे और व्यापारी के रूप में काम किया करते थे। अपनी ईमानदारी और सच्चाई के कारण उन्हें अल अमीन यानी विश्वसनीय कहा जाता था। 40 वर्ष की आयु में मक्का के पास हिरा के गुफा में ध्यान करते हुए उन्हें फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से ईश्वर का पहला संदेश प्राप्त हुआ। यहाँ से उनके पैगम्बर होने की शुरुआत हुई और उन्होंने कुरान की आयतों का प्रचार शुरू किया। मक्का के आरंभिक विरोध और अत्याचारों के कारण 622 ईस्वी में वे अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना चले गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है और इसी वर्ष से इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की शुरुआत होती है। मदीना में उन्होंने एक मजबूत इस्लामिक राज्य और समाज का गठन किया। उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो एकेश्वरवाद केवल एक अल्लाह की इबादत करना इसका मतलब होता है। समानता और न्याय, सभी मनुष्य बराबर हैं और न्याय, दया, भाईचारे के साथ हमें आपस में रहना चाहिए। मानवता और अधिकार, उन्होंने महिलाओं, गरीबों और यहाँ तक कि जानवरों के अधिकारों की भी वकालत की थी। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद को खतमन नबीयन यानी पैगंबरों की श्रृंखला में अंतिम माना जाता है। 632 ईस्वी में मदीना में आपका निधन हुआ और उन्हें अल मस्जिद अन्नबीबी मदीना में दफनाया गया। हजरत पैगंबर मोहम्मद को हम नमन करते हैं।

दोस्तों, दुनिया में हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दी गई। इसके बाद हर वर्ष 8 जून की पहचान विश्व महासागर दिवस के रूप में होने लगी। इसका मुख्य उद्देश्य महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। कई सालों से लगातार हो रहे प्रदूषण का असर महासागरों में भी हो रहा है। वर्षों से मनुष्यों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के कारण महासागरों में जलीय आवासों का विनाश हो रहा है। विश्व महासागर दिवस को महासागरों के अंधाधुंध दोहन को कम करने और उनके संरक्षण के लिए स्थायी समाधान और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दुनिया में 5 महासागर और बहुत सारे सागर हैं। जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसी तरह भूमध्य सागर सागरों में सबसे बड़ा है। सागर और महासागर में एक बड़ा अंतर यह होता है कि सागर की गहराई नापी जा सकती है, पर महासागर की वास्तविक गहराई माप पाना मुश्किल है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बात करें तो प्रशांत महासागर का मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा क्षेत्र है। वहां की गहराई करीब 36,200 फीट मापी गई है, लेकिन विशेषज्ञ इसे प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई नहीं मानते। वहीं सबसे गहरे समुद्र की बात करें तो कैरेबियन सागर की गहराई करीब 22,788 मापी गई है। महासागरों की औसत गहराई की बात करें तो करीब 3,953 फीट से 15,215 फीट के बीच होती है। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ महासागरों से ही माना जाता है। महासागरीय जल में ही पहली बार जीवन का अंकुर फूटा था। आज महासागर असीम जैव विविधता का भंडार है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग में फैले हुए हैं महासागर। विश्व के महासागरों और सागरों का क्षेत्रफल 367 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का 2 गुना और चांद के क्षेत्रफल का 9 गुना है। विश्व का लगभग 98% जल सागरों में, लगभग 2% नदियों, झीलों, भूगर्भ और मिट्टी में है। विश्व की सतह पर उपस्थित जल का लगभग 20% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। महासागर में पानी का तापमान और ऑक्सीजन का स्तर समुद्री जीव जंतुओं को भूमध्य रेखा से बचाए रखने और साथ मिलाकर रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। महासागर ही समुद्र में जीव जंतुओं की ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 5 महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 30% हिस्से में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। दूसरा है अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। इस महासागर का क्षेत्रफल 10,64,00,000 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर है हिंद महासागर। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। चौथे नंबर पर है अंटार्कटिक महासागर। इसे दक्षिण महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर का क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। महासागरों की लिस्ट में सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। इस महासागर का क्षेत्रफल 1,40,60,000 वर्ग किलोमीटर है और ये महासागर साल भर समुद्री बर्फ से ढका रहता है। आज विश्व महासागर के दिवस पर आइए हम सब प्रण लें कि हम महासागरों को प्रदूषण मुक्त रखेंगे। विश्व महासागर 2026 की थीम है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विथ अवर ओशन, यानी पुनर्कल्पना उस दुनिया से परे जिसे हम जानते हैं, हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। ये थीम महासागरों के साथ इंसानों के संबंधों को फिर से जोड़ने और उनकी रक्षा करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और महासागरों को प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बचाना है। विश्व महासागर दिवस की शुभकामनाओं के साथ अब आइए सुने ये प्यारा सा गाना।

विजय पथ फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत पद किया था अनु मलिक ने और शब्द रचना थी जमीर काजमी की। और दोस्तों नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद वापस लौटेंगे, होगी थोड़ी बातचीत, होगा साथ गीत संगीत का सिलसिला।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

दोस्तों, आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं या उनसे जुड़े ऊतक असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं तो एक गांठ बन जाती है जिसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि सभी ट्यूमर कैंसरस नहीं होते। कुछ ट्यूमर सौम्य यानी बिनाइन भी होते हैं। अक्सर ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, लेकिन न्यूरोसर्जरी, आधुनिक रेडियोथेरेपी के कारण आज ब्रेन ट्यूमर का उपचार जो है वो संभव है। 32,000 से अधिक नए ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर के मामले सामने आते हैं भारत में प्रतिवर्ष। 3.2 लाख से अधिक नए ब्रेन एवं CNS कैंसर के मामले दर्ज होते हैं दुनिया भर में हर वर्ष। लक्षणों की अगर हम बात करें तो अगर इस तरह के लक्षण जो हम आपको बताने वाले हैं दिखाई देते हैं तो इन्हें कतई नज़रअंदाज ना करें और समय रहते चिकित्सीय परामर्श ज़रूर लें। जैसे लगातार या बढ़ता हुआ सर दर्द, सुबह के समय खासकर अधिक दर्द होना और उल्टी महसूस होना, दौरे पड़ना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, बोलने में कठिनाई, याददाश्त कमज़ोर होना, दृष्टि धुंधली होना, संतुलन बिगड़ना। अधिकांश प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर को पूरी तरह रोकने का कोई निश्चित तरीका फिलहाल उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ सावधानियां जोखिम करने और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। जैसे धूम्रपान से बचें, शराब और दूसरे नशों से दूर रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, गंभीर लक्षणों की अनदेखी कतई न करें और समय पर डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें। ब्रेन ट्यूमर के प्रकार और कारणों की अगर हम बात करें तो बिनाइन ट्यूमर कैंसर रहित होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक हो सकते हैं। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसर युक्त होते हैं, तेज़ी से बढ़ सकते हैं, आसपास के ऊतकों को भी प्रभावित कर सकते हैं। प्राइमरी ट्यूमर सीधे मस्तिष्क में विकसित होते हैं, वहीं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों में उत्पन्न कैंसर से फैलकर मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। और इसके होने के कारणों में आनुवांशिक विकार शामिल है। सिर या गर्दन पर पहले उच्च मात्रा में रेडिएशन का संपर्क अगर हुआ हो तो भी इसके होने का खतरा रहता है, लेकिन अधिकांश मरीजों में इसके होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता। MRI ब्रेन ट्यूमर की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच मानी जाती है, वहीं CT स्कैन आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोगी जांच है। ट्यूमर के प्रकार की अंतिम पुष्टि बायोप्सी से होती है। कुछ आधुनिक उपचार जो हैं जिनसे ब्रेन ट्यूमर का सफलतम उपचार किया जा सकता है, जैसे न्यूरोसर्जरी, जहां संभव हो ऑपरेशन द्वारा ट्यूमर को निकाला जाता है, रेडियोथेरेपी, इसमें उच्च ऊर्जा किरणों की मदद से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, गामा नाइफ, ये बिना चीर फाड़ की अत्यंत सटीक रेडियो सर्जरी तकनीक है, साइबर नाइफ, जटिल आकार वाले ट्यूमर के उपचार में ये एक उपयोगी तकनीक मानी जाती है, प्रोटोन बीम थेरेपी, ये विशेष रूप से बच्चों में उपयोगी मानी जाती है क्योंकि इससे आसपास के स्वस्थ मस्तिष्क को कम नुकसान पहुँचता है, कीमोथेरेपी, कुछ प्रकार के ब्रेन ट्यूमर में ये अत्यंत प्रभावी उपचार साबित होती है। तो लक्षणों की अनदेखी ना करते हुए समय पर देखभाल और चिकित्सीय परामर्श किसी भी बीमारी के निदान के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी।

ए.आर. रहमान और शाशा तिरुपति की आवाज़ों में मॉम फिल्म का गाना था ये। इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत था, संगीत निर्देशन था ए.आर. रहमान का।

दोस्तों, एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था, सर टिम बर्नर्स-ली का आज जन्मदिन है। उन्होंने ही दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर और HTML भाषा बनाई, जिसने इंटरनेट को एक आम इंसान की पहुंच तक पहुंचाया। उनका जन्म 8 जून 1955 को लंदन में हुआ था। उनके माता पिता दोनों गणितज्ञ थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भौतिकी में डिग्री प्राप्त की। 1989 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड की सन प्रयोगशाला में काम करते हुए उन्होंने वैज्ञानिकों के बीच जानकारी साझा करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने 1990 में पहला वेब सर्वर HTTPD और पहला ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। बर्नर्स-ली चाहते थे इंटरनेट की ये तकनीक पूरी दुनिया के लिए मुफ्त और खुली रहे। उन्होंने इसके लिए कभी कोई पेटेंट नहीं लिया और ना ही इसके इस्तेमाल पर कोई शुल्क लगाया। इंटरनेट के क्षेत्र में इस क्रांतिकारी योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2004 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। इसके अलावा उन्हें ट्यूरिंग अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। वर्तमान में वो इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करने और लोगों को उनके पर्सनल डेटा का नियंत्रण वापस दिलाने के लिए इंटरप्ट जैसी कंपनियों के माध्यम से काम कर रहे हैं।

श्रोताओं, भारत के एक महान नाटककार, रंगमंच निर्देशक, कवि और अभिनेता थे हबीब तनवीर। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने पारंपरिक भारतीय लोक नाट्य, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के नाचा और आधुनिक शहरी रंगमंच का एक अनूठा मिश्रण तैयार किया। उन्होंने 1959 में नया थिएटर की स्थापना की। उनके प्रमुख नाटकों की अगर हम बात करें तो आगरा बाजार, जो 1954 में आई थी, ये उनकी सबसे पहली और मशहूर संगीतमय प्रस्तुतियों में से एक है, जो 18वीं सदी के उर्दू कवि नज़ीर अकबराबादी पर आधारित थी। 1975 की चरणदास चोर, ये उनकी सबसे लोकप्रिय कृतियों में से एक है, जिसे काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। दूसरे प्रमुख नाटकों में मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम, ससुराल, मोर नाम दामाद और जिस लाहौर नहीं देखिया शामिल हैं। वे ग्रामीण और आदिवासी लोक कलाकारों को आधुनिक मंच पर लाए। उन्होंने अपनी अधिकतर प्रस्तुतियों में अवधी और छत्तीसगढ़ी जैसी स्थानीय बोलियों और संगीत का शानदार इस्तेमाल किया। उनकी शैली ने भारतीय नाटक परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में प्रतिष्ठित फ्रेंच फर्स्ट पुरस्कार भी मिला। नाटकों के अलावा उन्होंने रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी, जो 1982 में आई थी, सहित कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय भी किया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे 1972 से 1978 तक भारतीय संसद के उच्च सदन के लिए भी नामांकित सदस्य रहे। महान नाटककार, रंगमंच निर्देशक, कवि और

0: अभिनेता को आज हम उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं और उन्हें नमन करते हुए आइए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: मत कहो।

और श्रोताओं, इसी गाने के साथ आज का नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अब बस यहीं तक। तो दीजिए अपनी रेडियो सखी श्रीति को इजाजत। नमस्कार।

0: Skateboard.
1: आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जाँच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। दिन के 12:05 हुए हैं और इस समय आप आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के साथ हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हमें सुन रहे हैं। लेकर आए हैं कार्यक्रम भावगीत आपके लिए। स्वागत आप सबों का इस कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। स्वीकार कीजिए स्नेह भरा नमस्कार।

दोस्तों कहते हैं प्यार में बहुत ताकत होती है, बशर्ते अगर बंधन में दो रूह बंधे हों। क्योंकि बात जब दो रूहों के मिलन की होती है तो इश्क इबादत बन जाता है। तब ना तो जिस्म पर पड़े नील के निशान नज़र आते हैं और ना ही हाथों की छाले। सूफियों संतों की गलियों में दिन से रात और रात से दिन का गुजर बसर हो ही जाता है किसी तरह। दिल कहता है तो छोड़ के ना जा, और अगर जाना ही है तो कोई निशानी छोड़ जा, वहीं जहां हम अक्सर मिला करते थे। मैं तो उसी निशानी की माला जपते जपते शाम की तन्हाई काट लूँगा, और जब रात होगी तो सिरहाने पड़े चांद का माथा चूम लूँगा। ये जिस्म जुदा हुए तो क्या हुआ, ये जिस्म जुदा हुए तो क्या हुआ, मेरी रूह का वास्ता तो तेरी रूह से है।

जुदाई के रंग में मिलकर प्यार का रंग और गहरा जाता है। पल पल बढ़ती दूरियां बेशकीमती नज़दीकियों की महरूमी का एहसास और शिद्दत से करवाती हैं। अब अगर इबादत की तरह इश्क किया है तो दिल निकल पड़ता है बुल्ले शाह की तरह खुद में खुदा की तलाश करने।

और श्रोताओं, इसी गाने के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं सूरमा, बाजीराव मस्तानी, सुल्तान और हिना। आवाजें थीं इन गानों के लिए दिलजीत दोसांझ, शारा फरीदी, अल्तमश फरीदी, शशि सुमन, श्रेयस पुराणिक, पापोन और लता मंगेशकर की। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय, संजय लीला भंसाली, विशाल शेखर और रविंद्र जैन। गीतकार थे गुलजार, एएम तोराज, इरशाद कामिल और रविंद्र जैन।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हैं। दिन के 12:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद नज़ाकत अली और उस्ताद सलामत अली खान का ख्याल गायन राग पूर्वी और मधुवंती में।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। अब आइए सुने राग मधुवंती में उस्ताद नज़ाकत अली खान और उस्ताद सलामत अली खान का ये ख्याल गायन।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsavi.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 साल में देश ने देखे कई बदलाव। विकास का लाभ अंत्योदय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से मिला झटका। डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज। जमीन घोटाले से जुड़ा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन किया दाखिल। जीत का किया दावा। और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई। कहा, सशक्त हो रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की यह यात्रा मानवीय सशक्तिकरण और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इंडी गठबंधन ने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया।
1: हम लोग के पास पर्याप्त संख्या है और 2 प्रत्याशियों के साथ महागठबंधन मैदान में है, लेकिन इस राज्य में फिर से जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास भाजपा कर रही है, उसके बारे में बताएं। इनके विधायकों को इन लोगों ने बंधक रख लिया है, बिना कैंडिडेट का नाम बताए जो हस्ताक्षर ब्लैंक पेपर पे लिया गया है वो किस तरफ इंडिकेट करता है यहाँ लोगों के सामने।
0: राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सचेतक नवीन जायसवाल के आवास में आज भाजपा विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे परिमल नाथवानी भी शामिल हुए। इधर भाजपा भी एक सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने दावा किया कि चुनावी गणित भाजपा के पक्ष में है और पार्टी समर्थित प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचेंगे।
2: यकीन मानिए, हमारा फोकस है कांग्रेस मुक्त भारत का। कांग्रेस ने जिस बाहरी उम्मीदवार को यहाँ टिकट दे दिया, जिसका झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम लोग यहाँ से विदा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दांव खेलेगी ना, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्ड अंतिम में खोलेगी और एक चीज पक्का है, हम जीतेंगे, कांग्रेस हारेगी।
0: रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें जिले में तैनात सभी पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के पुलिसकर्मी शामिल थे। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और ग्रामीण एसपी ने पुलिसकर्मियों को 24 घंटे अलर्ट में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
3: रांची जिला अंतर्गत जितने पीसीआर और हाईवे और माइक पेट्रोल में ड्यूटी करते हैं पदाधिकारी और जवान ड्राइवर, उन सभी का एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें सभी को उनके दायित्व के बारे में बताया गया। किसी भी तरह का अगर आपराधिक एक्टिविटी हो रहा है, कोई असामाजिक कार्य हो रहा है, तो उसके प्रति इंटेलिजेंस डेवलप करना।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 जून को 10 वर्ष पूरे होने पर कल राज्यभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयुष्मान आरोग्य शिविर लगेंगे। साथ ही जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सीएचसी और एफआरयू में विशेष पीएमएसएमए सत्र चलाकर गर्भवती महिलाओं की ए

0: पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने वीडियो संदेश में कहा कि आज पूरा राष्ट्र आकाशवाणी से जुड़ा है। आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो रही है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 508 अंक गिरकर 73,735 पर और निफ्टी 159 अंक गिरकर 23,207 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरुकडीहा गांव में एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ जीतवाहन उराव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
2: 3 बच्चों की हत्या हुई है, जो पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो कमजोर भी है, उनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीजों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: गिरिडीह जिले में योग के नियमित आयोजन से लोग निरोग हो रहे हैं। पतंजलि परिवार की ओर से सालों भर योग का नियमित शिविर लगाकर लोगों को निरोग किया जा रहा है। योग करने वालों ने स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में योग के फायदे बताए।
3: मैं योगा में 2 साल से आ रही हूँ। योग करने से बहुत ही फायदा होता है। पहले शुगर 400 था और अभी मेरा शुगर 125 है। स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ही जरूरी है।
4: बहुत से बीमारियों से ग्रस्त है, अब हमें बहुत उसमें आराम मिल रहा है। मैं संदेश दूंगा कि आप योग से निरंतर जुड़े रहें और आज जो वर्तमान समय में लोगों को बीमारियां बढ़ती जा रही है, दवाओं पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वो योग से ही छुटकारा मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास हो गया है और मैं आगे निरंतर योग करता रहूंगा।
0: CBSE और NCERT की पहल पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 15 से 18 जून 2026 तक ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन 10 जून तक होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 साल में देश ने देखे कई बदलाव। विकास का लाभ अंत्योदय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से मिला झटका। डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज। जमीन घोटाले से जुड़ा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन किया दाखिल। जीत का किया दावा। और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई। कहा, सशक्त हो रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण हो रहा था। अभी एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 1:20 हुए हैं और इस समय हम आपको फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाते हैं। सुनवाएंगे आज भी, लेकिन थोड़ी ही देर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
4: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
4: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: भारत में जल संकट के कारण 60% से अधिक लड़कियां हर महीने औसत 2 दिन स्कूल नहीं जा पाती, जबकि राजस्थान में अनुपस्थिति 5 दिन तक होती है, जो अक्सर लड़कों की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक होती है।
6: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
6: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
6: हेलो डॉक्टर।

0: Akashwadi at 90.
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657 296 04।

0: हेलो, आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद हाजिर हैं हम कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और इस संगीत में सफर के हम सफर, मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों,

दोस्तों, 8 जून 2026 को आकाशवाणी ने अपनी स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1936 में इसी दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। ये भारत का प्रमुख सार्वजनिक सेवा प्रसारक है जो देश के कोने कोने तक पहुंचता है। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से बॉम्बे और कलकत्ता में दो छोटे ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। इसके बाद 8 जून 1936 को इसे ऑल इंडिया रेडियो का आधिकारिक नाम दिया गया। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक रूप से आकाशवाणी के रूप में नया नाम दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ आकाश से आने वाली आवाज है। ये नाम मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर MV गोपाल स्वामी द्वारा गढ़ा गया था। आज आकाशवाणी 591 केंद्रों का संचालन करती है और देश के लगभग 98% हिस्से में इसकी पहुंच है। ये कुल 23 भाषाओं और 146 बोलियों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अपने आदर्श वाक्य पर चलते हुए इसने पीढ़ियों तक देशवासियों को समाचार, सूचना, शिक्षा और संगीत प्रदान करके उन्हें आपस में जोड़ने का एक बड़ा कार्य किया है। आकाशवाणी के 90 सालों के शानदार इतिहास और सफर की शुभकामनाओं के साथ आखिर में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों कि हमारा और आपका साथ तो बहुत पुराना है और बखूबी जाना पहचाना भी है। बस हर रोज हमारी मुलाकात रोचक दिलचस्प कार्यक्रमों के बहाने से होती है आपसे।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की पहली पेशकश हमने आपको सुनवाई खानदान फिल्म से। खयाम का संगीत निर्देशन था नक्श लियालपुरी का लिखा हुआ गीत और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। अगला गाना आइए आपको सुनवाते हैं अगर तुम ना होते फिल्म से। आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है, गुलशन बावरा की शब्द रचना है और आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और सदाबहार अभिनेत्री हैं डिंपल कपाड़िया। आज डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन है। महज 16 वर्ष की उम्र में राज कपूर की फिल्म बॉबी जो 1973 में आई थी से धमाकेदार डेब्यू कर वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। अपनी बेहतरीन अदाकारी, बोल्ड किरदारों और खूबसूरती के लिए मशहूर डिंपल ने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। उनका असली नाम डिंपल चुन्नी भाई कपाड़िया है। उन्होंने 1973 की फिल्म बॉबी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके सह कलाकार ऋषि कपूर थे। 1973 में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से उन्होंने विवाह किया। उनकी प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो बॉबी, सागर, रुदाली, क्रांतिवीर, दबंग और अंग्रेजी फिल्म टेनेट इनमें शामिल हैं। बॉबी की अपार सफलता के बाद डिंपल ने शादी कर ली और फिल्मों से ब्रेक ले लिया, लेकिन 1984 में पति राजेश खन्ना से अलग होने के बाद उन्होंने फिल्म सागर से जबरदस्त वापसी की फिल्मों में। इस फिल्म और बॉबी दोनों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1993 में रुदाली फिल्म से अपनी कलात्मक क्षमता का लोहा मनवाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 2000 के दशक में भी उन्होंने दिल चाहता है, कॉकटेल, फाइंडिंग फैनी और हॉलीवुड फिल्म टेनेट जैसे शानदार प्रोजेक्ट्स में काम करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। डिंपल कपाड़िया को उनकी सहज स्क्रीन प्रेजेंस, आकर्षक हेयर स्टाइल और ट्रेडिशन से हटकर बोल्ड किरदार चुनने के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ट्रेंडी और सशक्त महिला माना जाता है। डिंपल कपाड़िया को आज उनके जन्मदिन पर और आगे आने वाले स्वस्थ सफलतम जीवन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइए सुने उन्हीं की अभिनीत फिल्म रुदाली का ये गाना।

लता मंगेशकर की आवाज़ में रुदाली फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे भूपेन हजारिका और गीत लिखा था गुलजार ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए आपको सुनवाते हैं जीना मरना तेरे संग फिल्म से। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ें हैं। दिलीप सेन समीर सेन का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है। गीत लिखा है समीर ने।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे सलामी फिल्म से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर यह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम

0: कर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
3: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
4: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का

0: आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधान मंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
5: आदा, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
3: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
7: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामनाएं।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
8: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघजी के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हुए हैं। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं गीत संगीत का सिलसिला। जी हाँ, कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। सुनवाएंगे कुछ आवश्यक संदेशों के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रीति। नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे शिल्पा शेट्टी अभिनीत फिल्म के गाने से। क्यों? क्योंकि आज भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, उद्यमी, लेखिका शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। 2026 तक उन्होंने बॉलीवुड में 3 दशकों से अधिक का सफर तय कर लिया है। उन्होंने 1993 में फिल्म बाजीगर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनके काम को काफ़ी सराहा गया था। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में धड़कन, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अपने और लाइफ इन अ मेट्रो शामिल हैं। वर्ष 2007 में ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर जीतने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुई और ये उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शिल्पा एक जानी मानी फिटनेस आइकन भी हैं। उन्होंने अपनी खुद की फिटनेस और वेलनेस ऐप सिंपल सोलफुल लॉन्च की है। इसके अलावा वो मुंबई में कई सफल रेस्टोरेंट और स्पा भी चलाती हैं। वो डांस रियलिटी शो जैसे सुपर डांसर और इंडियाज गॉट टैलेंट में एक लोकप्रिय जज के रूप में भी सक्रिय रही हैं। उन्होंने द ग्रेट इंडियन डाइट और द डायरी ऑफ अ डोमेस्टिक डीवा जैसी किताबें भी लिखी हैं। तो शिल्पा शेट्टी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आइए सुने उनकी अभिनीत फिल्म आओ प्यार करें का ये गाना।

कुमार सानू की आवाज़ में, आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में, श्याम राज का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म आओ प्यार करें से। अब आइए आपको सुनवाते हैं स्पेशल 26 फिल्म का ये गाना एमएम क्रीम और केके की आवाज़ों में। संगीत एमएम क्रीम का है, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

हम तुम फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में। प्रसून जोशी की शब्द रचना थी, संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। अब आइए आपको सुनवाते हैं माय नेम इज़ खान फिल्म का गाना, राहत फ़तेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में। गीत लिखा है निरंजन आयंगर ने और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम ने बताया कि पूरा गठबंधन एकजुट है और अपनी जीत पर पूरा भरोसा है।
2: अपना जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसके दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, इस विश्वास का हम नामांकन करें। माननीय मुख्यमंत्री है तो उनसे कोई भी मिल सकते हैं, नेताओं से सब लोग मिलते ही हैं, स्वाभाविक है। उसका अर्थ कतई नहीं होता है कि कोई हमारे गठबंधन के व्यक्ति को तोड़ दे। और मैं ये मानता हूँ कि चूंकि गठबंधन के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री है और उनके लीडरशिप पर बैठक हुई है, ये तय हुआ है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे विधायक एकजुट हैं।
1: उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन में एनडीए के विधायक प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नाथवानी ने कहा कि उन्होंने झारखंड में पहले भी काम किया है और यदि दोबारा अवसर मिलता है तो वे राज्य के लिए पहले से अधिक काम करेंगे।
3: मैं पुराना झारखंडी हूँ और झारखंड में रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत बहुत अच्छी होगी, सबका सहयोग मिलेगा तो मैं जीतने वाला ही हूँ। झारखंड के लिए मैंने क्या काम किया हुआ है, मेरा दो टर्म आपने देखा है, उससे ज्यादा ही होगा। मैंने यहाँ हॉस्पिटल बनाई थी, IIM भी बनाया था, तो ये सब मेरा काम तो इधर है ही सबके सामने।
1: रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धन शोधन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने माना कि मामले में विचारण के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इस स्तर पर आरोप समाप्त करने का कोई आधार नहीं बनता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2025 में याचिका दायर कर खुद को मामले से मुक्त करने की मांग की थी। झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका का झारखंड उच्च न्यायालय ने निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है और इस संबंध में संकल्प भी जारी किया जा चुका है। रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी मोनू कुमार और सोनू शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की है। दोनों आरोपियों पर अंतर्राज्यीय पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह के एजेंट होने का आरोप है। मामले में अब तक 160 से अधिक अभ्यर्थियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि गिरोह से जुड़े कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी

अध्यायी वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अपनाई जा रही ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में CBSE की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कोडरमा जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के आरोप में सतगावा थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने यह कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की है। साथ ही उन्हें तत्काल पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है, ये ज्ञान का भंडार है। इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गाँव खिंदासर

0: तहसील कोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर भारत के किस गांव में पड़ता है?
0: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: कौवे को यूं बुदवनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे तुम लोगों ने ये क्या किया?
1: कोचू मंगला,
0: तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
2: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
3: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था।

0: हाँ।
1: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
2: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
1: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
1: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
1: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: ओ, ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
1: ठीक
3: हाँ,
1: है
3: अब बना।
4: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
1: ठीक है
3: चल चल चल चल, चल। हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
4: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
6: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
7: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहाँ रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए। फिर क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था।

0: जी
1: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
0: तो फिर
1: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
0: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहाँ सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
1: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
1: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेंसन,
4: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हो तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।

0: पर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
1: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
2: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। और मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
1: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
3: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग। FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। उपशास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने दादरा और टप्पा। कलाकार हैं विदुषी सिद्धेश्वरी देवी।

0: विदुषी सिद्धेश्वरी देवी का दादरा और टप्पा गायन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3:45 होने को है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं पटेल महतो और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत।
2: काशी फूल फूटे चौभुवन गे सजनी।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आज के कलाकार हैं पटेल महतो और साथी। आइए सुनते हैं कुरमाली में ये अगली प्रस्तुति।

0: पटेल महतो और साथियों के स्वर में गाए इस कुर्माली लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि उनके उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और प्रणव झा की जीत सुनिश्चित है।

0: मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल भी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने कहा कि वे भाजपा के हर निर्णय के साथ हैं। वहीं भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि एनडीए के विधायक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए मतदान करेंगे। नई दिल्ली में आज दोपहर इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन और सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई पर राय ली जा रही है। रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धन शोधन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह आदेश सुनाया। रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी मोनू कुमार और सोनू शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जानी दुश्मन फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर की आवाज में है ये गाना। संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है वर्मा मलिक ने। आइए सुनें।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और सुदेश भोसले के की मिली जुली आवाजों में अजूबा फिल्म से। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

अब आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में राजपूत फिल्म का ये गाना। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

अब आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में प्रेम रोग फिल्म का गाना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा है संतोष आनंद ने। आप ये गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए और फिल्म संगीत के कार्यक्रम से फिलहाल मुझे यानी श्रीति को अब इजाजत दीजिए। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। कार्यक्रम का अगला भाग सुनिएगा अपनी रेडियो दोस्त मीरा के साथ। तो मुझे यानी श्रीति को अब दीजिए इजाजत, नमस्कार, और फिलहाल सुनिए प्रेम रोग फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में।

फिल्म प्रेम रोग का ये गीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज है 8 जून और आज पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष सुनेंगे विशेष वार्ता कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। इस कार्यक्रम का समय होगा रात 8 बजे और प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत।

किशोर कुमार, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में आपने सागर फिल्म का ये गीत सुना। गीत के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे और संगीत दिया था आरडी परमन ने।

मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आपने सुना चालबाज फिल्म का ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओ, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष सुनेंगे विशेष वार्ता कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। समय होगा आज रात 8 बजे। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: मनहर उदास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में आपने सुना राम लखन फिल्म का ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और प्रणव झा की जीत सुनिश्चित है। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने के लिए झारखंड के देवघर जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने यह जानकारी दी। रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धन शोधन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह आदेश सुनाया। खूंटी पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के तांबा गांव के पास छापेमारी कर लगभग 12 लाख रूपये मूल्य की करीब 2 किलो अवैध अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में जिला स्थापना सह अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य अनुकंपा नियुक्ति के 2 मामले में से 1 को स्वीकृति दी गई, जबकि दूसरे मामले को जांच रिपोर्ट के बाद अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई पर राय ली जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
6: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
7: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे युवा साथियों का और दैनिक कार्यक्रम युववाणी ये सुनते हैं।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाणी FM 102.4 MHz पर। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज 8 जून 2026 को हमारी आकाशवाणी अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रही है। जरा सोचिए, जब देश में न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट, न सोशल मीडिया, तब भी एक आवाज थी जो घर घर पहुंचती थी, जो किसान के खेत से लेकर सैनिक की चौकी तक, एक माँ की किचन से बच्चों की किताबों तक सबको जोड़ती थी। वो आवाज थी आकाशवाणी की। मैं हूँ आज की होस्ट आयुषी झा और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 3 युवा साथी जो आकाशवाणी के 90 सालों के सफर को अपने नजरिए से सजाएंगे। हमारे साथ हैं योक्षा सरकार, जो एक आकांक्षी गायिका, लेखिका, फिल्म और नाटक कलाकार है। साथ है नीलेश राज, जो डेडिकेटेड सोशल वर्कर है। और हमारे साथ जुड़ी हैं सिमरन कुमारी, जो कंटेंट क्रिएटर, लेखिका, वॉइस आर्टिस्ट और कहानीकार है। आप तीनों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे बेहद खुशी हुई।
2: और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो यह है कि पिछले 90 सालों में देश ने इतने उतार चढ़ाव देखे, आकाशवाणी हमेशा साथ रहा एक ट्रू कंपेनियन की तरह।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे मामा जी आज भी सुबह उठकर आकाशवाणी सुनते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक रेडियो चैनल नहीं, एक आदत है, एक नीड है।
0: दोस्तों, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष केवल एक संस्थान की यात्रा नहीं बल्कि भारत के विकास का एक जीवंत गाथा है। 9 दशकों से आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक ज्ञान, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता का प्रकाश पहुंचाया है। अब बात करते हैं आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा की। इन 90 वर्षों में भारत ने कितने उत्थान और पतन देखे, देश का इंडिपेंडेंस देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा और डिजिटलाइजेशन अब देख रहे हैं। आज से 90 वर्ष पहले और आज के भारत में कितना अंतर है, और इसी अंतरकाल में आकाशवाणी ने लोगों के मन में जगह बनाई और लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। नीलेश, आकाशवाणी की 90 वर्षों की डेवलपमेंटल जर्नी के बारे में कुछ बताइए।
2: बिल्कुल आयुषी, 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और यहीं से उसकी औपचारिक यात्रा प्रारंभ हुई। 1937 में समाचार सेवा का गठन हुआ और नियमित समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई।
1: 1947 में बंटवारे के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था और कई लोगों के घर उजड़ रहे थे, तब आकाशवाणी ने राष्ट्र हित में आगे आकर एक अहम भूमिका निभाते हुए सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता लाने का काम किया।
3: बिल्कुल योक्षा, 1956 में आकाशवाणी नाम को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। फिर आकाशवाणी ने पीछे

0: कर कभी नहीं देखा। देश भर में नए केंद्र स्थापित हुए। 1957 में शुरू हुई विविध भारती, जिसने फिल्म, संगीत और मनोरंजन को घर घर तक पहुंचाया।
1: 1997 में प्रसार भारती के गठन के बाद आकाशवाणी की तरक्की को पंख लगे और शुरू हुआ आकाशवाणी का आकाश में उड़ने का नया सफर। क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने में भी आकाशवाणी का बड़ा हाथ रहा है।
2: बिल्कुल नीलेश, पर आजकल कार्यक्रम जितनी सरलता से प्रसारित होती है, ये पहले उतना आसान नहीं था। सिमरन, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी पुराने कार्यक्रम प्रसारण तकनीकों के बारे में।
0: बिल्कुल आयुषी, पहले रिकॉर्डिंग के लिए रील टू रील, टेप और ग्रामोफोन रिकॉर्ड का उपयोग होता था। प्रसारण मेनली मीडियम वेव और शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर के माध्यम से होता था। कार्यक्रमों के समापन की प्रक्रिया पूरी तरह से मैनुअल थी, जिसमें काफी समय लगता था।
3: इतना ही नहीं सिमरन, दूरस्थ केंद्रों तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए टेलीफोन लाइन और विशेष संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाता था। सचमुच जमाना कितना बदल गया है।
2: बिल्कुल, नई तकनीकों ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। अब बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की। इसका उद्देश्य नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को अब बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की। इसका उद्देश्य नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं योक्षा?
3: मेरा मानना है कि आकाशवाणी ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आदि सामाजिक विषय पर कार्यक्रम प्रसारित कर लोक कल्याण किया है। लोगों को टीकाकरण और पोषण जैसे विषयों पर जागरूक बनाया है।
1: एग्जैक्टली योक्षा, आकाशवाणी सिर्फ इन्फॉर्मेशन का मीडियम ही नहीं बल्कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का टूल भी है। उसने सरकार की बनाई हुई योजनाओं और नीतियों को लोगों तक पहुंचाया है, जिससे नागरिकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति समझ विकसित हुई है और लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है।
0: राइट नीलेश, और तो और प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और अन्य संकटों के दौरान आकाशवाणी ने लोगों तक त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई, जिससे जन सुरक्षा और राहत कार्यों को गति मिली।
2: बिल्कुल सही कहा सिमरन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये सिर्फ आकाशवाणी का मोटो नहीं बल्कि पिछले 90 सालों से आकाशवाणी ने इसे जिया है। आकाशवाणी विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित करती है। नीलेश, इस पे आपका क्या कहना है?
1: आयुषी, पिछले 90 वर्षों में आकाशवाणी ने विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित किए हैं तथा प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को आवाज दी है। जैसे कृषि कार्यक्रमों ने किसानों को नई तकनीकों से परिचित करवाया है।
0: और इतना ही नहीं, महिला केंद्रित कार्यक्रमों ने जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने ज्ञान और संस्कारों का प्रसार किया।
3: और तो और सिमरन, भारत जैसे बहुभाषी देश में आकाशवाणी विभिन्न भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है, जो देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए लाभदायक हो। छोटे बच्चों के लिए पल्लव प्रसारित किया जाता है, जिसमें कविताएं, कहानियां, गीत, नाटक और जनरल नॉलेज से जुड़ी सामग्री शामिल होती है।
0: सही कहा योक्षा, कल कारखाने का कार्यक्रम औद्योगिक और श्रमिक मुद्दों को समर्पित होता है, जिसमें कारीगरों की समस्याओं, रोजगार के अवसरों और औद्योगिक विकास से जुड़ी जानकारी प्रसारित होती है।
1: आकाशवाणी युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवाणी प्रसारित करती है, जो मेरे अनुसार युवाओं के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कार्यक्रम शिक्षा, करियर, संस्कृति और सामाजिक विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी युवाओं तक पहुंचाती है, साथ ही साथ युवाओं को जागरूक, आत्मविश्वासी, जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है।
2: बिल्कुल नीलेश, आकाशवाणी एक ऐसी जनसंचार संस्था है जिसने केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि देश प्रेम, राष्ट्र चेतना और सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योक्षा, इस पे आपकी क्या राय है?
3: बिल्कुल, आकाशवाणी के देशभक्ति गीत, कविताएं और कार्यक्रम नागरिकों में देश प्रेम की भावना जागृत करता है। महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धाओं की अद्वितीय युद्ध कौशल का वर्णन और फ्रीडम फाइटर्स के अनंत सैक्रिफाइसेस को बताकर लोगों में राष्ट्र निष्ठा भर देता है।
1: आकाशवाणी विभिन्न राज्यों की भाषाओं, संस्कृतियों, लोक कला, संगीत और परंपराओं को प्रसारित करती है, जिससे लोगों में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव और अपनापन महसूस होता है। आकाशवाणी के प्रसारित कार्यक्रम लोगों को मानवता, समानता, भाईचारे का संदेश देते हैं, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है।
0: आकाशवाणी अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को राष्ट्र के विकास, सामाजिक जिम्मेदारी और सकारात्मक परिवर्तन में भागीदारी लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना

0: का विकास होता है। राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कर राष्ट्रीय चेतना की भावना को सशक्त करता है।
1: मैं आपकी बात से सहमत हूँ सिमरन। सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन के इस आधुनिक दौर में आज भी लोगों के बीच आकाशवाणी की लोकप्रियता बनी हुई है। आपको क्या लगता है योक्षा, इसके मुख्यतः क्या कारण है?
2: मेरा मानना है इसका सबसे प्रमुख कारण है विश्वसनीयता। सोशल मीडिया पर तो तिल का तार बना दिया जाता है जो ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां और फेक न्यूज को बढ़ावा देती है। वही आकाशवाणी एक भरोसेमंद और प्रमाणिक इन्फॉर्मेशन सोर्स के रूप में लोगों का विश्वास बनाया हुआ है।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है इसका महत्वपूर्ण कारण है इसकी व्यापक पहुंच। आकाशवाणी आज भी देश के कोने कोने तक पहुंचती है जहां इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं सीमित है। एक और कारण ये है कि प्रसारण सुनने के लिए लोगों को साक्षर होने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि आज भी लोग आकाशवाणी पर निर्भर रहते हैं।
3: व्यापक पहुँच के साथ साथ आकाशवाणी की फ्लेक्सिबिलिटी भी उसके पॉपुलैरिटी का कारण है। आकाशवाणी ने समय के साथ स्वयं को बदला है। आज इसके कार्यक्रम FM, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। और तो और, पब्लिक ओपिनियन एक्सपर्ट के इंटरव्यूज भी इसे लोगों से जोड़ते हैं और लोकप्रिय बनाते हैं।
1: बिल्कुल नीलेश, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष राष्ट्रीय एकता, सामाजिक विकास, शिक्षा के प्रसार और आर्थिक प्रगति जैसी अनेक चुनौतियां थी। ऐसे समय में आकाशवाणी ने एक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम के रूप में सरकार और जनता के बीच सशक्त सेतु बनाए। सिमरन, इस पे आप क्या विचार रखते?
0: आयुषी, पॉलिटिकल डिस्प्यूट के उस माहौल में आकाशवाणी ने विश्वसनीय जानकारियां प्रदान की जिससे अफवाहों पर नियंत्रण और जनता तक सही सूचना पहुंचाने में मदद मिली। आकाशवाणी ने देश भर के श्रोताओं को एक मंच से जोड़कर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया।
3: आकाशवाणी ने सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचाई। साथ ही विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में एकता की शक्ति बढ़ाने का भी काम किया।
2: और तो और नीलेश, आकाशवाणी ने मतदान जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान का महत्व, मतदान प्रक्रिया और निष्पक्ष चुनाव की जानकारी दी जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।
1: मैं आपकी बात से सहमत हूँ योक्षा, पिछले कई सालों में साक्षरता बहुत बढ़ी है। लोग अब पढ़ाई को महत्व देने लगे हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अभिभावक एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। नीलेश, आपके अनुसार आकाशवाणी यहाँ कैसे योगदान देती है?
3: आकाशवाणी लोगों को शिक्षा के महत्व और उसके लाभ में बनने वाले सशक्त भविष्य की जानकारी देती है, जैसे साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और अन्य शैक्षिक योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचाती है और महिलाओं की शिक्षा से बनने वाली प्रगतिशील भारत के बारे में भी बताती है।
2: आकाशवाणी विज्ञान, इतिहास, साहित्य, कृषि और करंट अफेयर्स पर कार्यक्रम प्रसारित कर श्रोताओं में ज्ञान की वृद्धि करता है। लोगों को नई कला सीखने के लिए प्रेरित भी करता है जिससे निरंतर सीखने की प्रवृत्ति विकसित होता है।
0: मैं आपकी बात से सहमत हूँ योक्षा, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। आकाशवाणी लोगों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाती है तथा ज्ञान को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाकर मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
1: बिल्कुल सिमरन, पहले महिलाओं को कितनी हीन दृष्टि से देखा जाता था, पर अब समय कितना बदल गया है। पहले वो किचन तक सीमित थी, आज कंपनी को लीड करती है।

0: बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर आवाज उठाई है। महिला केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को अपनी प्रतिभा, विचार और समस्या साझा करने का अवसर दिया है।
1: आकाशवाणी ने महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों

0: आकाशवाणी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। साथ ही आकाशवाणी ने स्वरोजगार, कौशल विकास तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। और तो और, विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं के अनुभव को प्रसारित कर अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।
1: मैं आपकी बात से सहमत हूं निलेश। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आप बताइए सिमरन, आकाशवाणी लोगों की सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका निभाता है?
2: आयुषी, आकाशवाणी वार्ताओं और परिचर्चाओं के माध्यम से लोगों का ज्ञान वर्धन करता है। सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार और उनकी बायोग्राफी को बताकर लोगों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करता है।
3: और तो और, आकाशवाणी विद्यार्थियों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे युवाओं को फॉर्म फिलअप डेट्स, एग्जाम डेट्स, रिजल्ट डिक्लेरेशन

0: का सुझाव देता है। अपनी दिनचर्या में योगा एक्सरसाइज जैसी अच्छी आदतों का प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करता है।
1: हाँ निलेश, अब बात करते हैं खेल जगत की। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। निलेश, आपके विचार से भारत के खेल जगत के विकास में आकाशवाणी का क्या योगदान रहा है?
0: आकाशवाणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की ताज़ा जानकारी श्रोताओं तक पहुँचाती है और सफल खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों को प्रसारित कर युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करती है।
2: स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और रोजगार के अवसरों की जानकारी देकर युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करता है।
3: खिलाड़ियों की उपलब्धियों का प्रसारण कर देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना मजबूत करती है।
1: मैं आपकी बात से सहमत हूँ सिमरन, तकनीकी विकास ने संचार, शिक्षा और सूचना के आदान प्रदान को नई गति दी है। आप बताइए निलेश, इस विषय में आकाशवाणी की क्या भूमिका है?
0: आकाशवाणी साइंस से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नई टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन और डिजिटल थॉट की जानकारी देता है और विज्ञान आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है।
3: राइट निलेश, आकाशवाणी इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाती है। आकाशवाणी लोगों को डिजिटल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रेरित भी करती है।
2: और सिमरन, आकाशवाणी इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निकल फील्ड्स में अवसरों की जानकारी देता है। आकाशवाणी ने स्वयं का टेक्निकल एडवांसमेंट कर एग्जाम्पल सेट किया है।
1: बिल्कुल योगशा, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। आकाशवाणी ने लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है। योगशा, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं?
2: आयुषी, मेरा मानना है आकाशवाणी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सतर्क बनाया है। विभिन्न रोगों जैसे टीवी होने के कारणों और लक्षणों को बताते हुए बचाव की जानकारी भी प्रसारित की है।
0: इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी जानकारी भी देता है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साक्षात्कार एवं वार्ताओं के माध्यम से प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है।
3: और इतना ही नहीं, आकाशवाणी तनाव, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा करती है और तंबाकू, धूम्रपान, शराब जैसे नशों को छोड़कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल सही बातें की योगशा, निलेश और सिमरन आप तीनों ने। बदलते समय और तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलते हुए भी आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जनसेवा की भावना को बनाए रखा है, जिसके कारण आज भी वो करोड़ों श्रोताओं के दिलों पर राज कर रही है। और आज 90 वर्षों की गौरवमय यात्रा पर मैं अपनी भावनाएं चंद पंक्तियों के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के समक्ष रखना चाहती हूं। 90 वर्ष से बहती ये हर वाणी की धार है, आकाश से जो उतरा है हर आंगन का उपहार है। 1927 की चिंगारी 1936 में नाम पाया, आकाशवाणी ने हर समय भारत का गौरव बढ़ाया। जब देश सोता है यह पहरेदार की तरह जागती है, जब देश रोता है ये ढांढस बांधती है। कलम से निकले भाव को हर घर पहुंचाई है, ख्वाब न देख पाने वाले आंखों की दुनिया बसाई है। इतने सपनों को उड़ान दिए, कितना उत्थान देखा, पतन देखा, विकसित भारत की ओर बढ़ने वाली एक एक कदम का जतन देखा, जो माँ की रसोई में बजे और किसानों के खेत तक जाए। कभी सरकार की नीतियों पे चर्चा करे, कभी खेल का लाइव स्कोर बताए, जनता तक पहुँचने वाली नेता की पहली आवाज बन जाती है, कभी न्यूज बताए, कभी गीत सुनाए, हर दिल को भाती है। जो भारत की गलियों में सालों से गूंजी है, हर बैठक सजाई है, आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की बधाई है।
4: इस खुशी के उपलक्ष्य पर आइए सुनते हैं फिल्म रेडियो का मन का रेडियो गीत, जिसके गायक हैं हिमेश रेशमिया, बोल लिखे हैं सुब्राट सिन्हा ने और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

हम स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें आकाशवाणी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हम कामना करते हैं कि आकाशवाणी इसी उत्साह, समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ आने वाले 90 वर्षों और उससे भी आगे तक भारत की प्रगति, एकता और विकास की यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। इसकी आवाज को यूं ही जन जन तक पहुँचाती रहे, नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे और अपने राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाती रहे। मैं आप तीनों युवा साथियों, योक्षा सरकार, निलेश राज और सिमरन कुमारी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आप सभी ने अपने बहुमूल्य विचारों और दृष्टिकोणों से इस परिचर्चा को समृद्ध किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का धन्यवाद। इन्हीं कामनाओं और मंगल भावनाओं के साथ आज के इस विशेष चर्चा को विराम देते हैं। अब मैं आयुषी झा आप सभी से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ। सुनते रहिए जन जन की आवाज, भारत की पहचान, आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं हमारे श्रमिक श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

0: नमस्कार श्रोताओं, इस बेहद खास शाम में कार्यक्रम कल कारखाने में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ढलती हुई इस शाम के साए में जब परिंदे अपने घरों के लिए लौट रहे हैं और घर रोशन हो रहे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं यादों का एक ऐसा कारवा जो सीधे आपके दिल को छुएगा।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: ये आकाशवाणी है, ये सिर्फ एक शब्द जब हवा के झोंकों के साथ तैरते हुए हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो एक अजीब सा सुकून और भरोसा जगा जाते हैं। ये महज किसी रेडियो स्टेशन की पहचान नहीं, बल्कि ये हर हिंदुस्तानी की सुबह का वो अलार्म और शाम की वो सुरीली महफिल है जिसने पीढ़ियों को जगाया और उनका मनोरंजन किया है। वक्त बदला, तकनीक बदली, पर जो कभी नहीं बदला वो है इस आवाज का सच। आज की ये शाम बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि आज हम सब मिलकर जश्न मना रहे हैं एक ऐसे गौरवशाली सफर का जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी 90 साल का बेमिसाल विश्वास। जी हाँ, आज आकाशवाणी अपने सफर के शानदार और बेमिसाल 90 साल पूरे कर रहा है।

बात जून 1936 की है, जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन इस आवाज को इसकी असली पहचान तब मिली जब इसे नाम मिला आकाशवाणी, यानी अंबर से गूंजती आवाज। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के महान आदर्श को सीने से लगाकर इस आवाज ने देश के हर कोने को, हर भाषा को एक धागे में पिरो दिया। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय सिर्फ 6 स्टेशन थे, लेकिन आज इन 90 सालों की यात्रा के बाद इसकी गूंज सैकड़ों ट्रांसमीटरों और दर्जनों बोलियों के साथ पूरी दुनिया में भारत की साख बन चुकी है।

आकाशवाणी सिर्फ समाचारों तक सीमित नहीं रहा, ये हमारी साझी तहजीब और संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक बना। पंडित रविशंकर के सितार की तान हो या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की गूंज, शास्त्रीय संगीत को आम भारतीय के दीवान खाने तक पहुंचाने का काम इसी मंच ने किया। साल 1957 में जब विविध भारती की शुरुआत हुई तो मानो हर घर में सुरों का मेला लग गया। हवा महल के झरोखे से आते नाटक हो या फौजी भाइयों की फरमाइश पर बजते तराने, इन सब ने हमारी जिंदगी की सबसे हसीन यादें बुनी हैं। श्रोताओं, वो दौर याद कीजिए जब टेलीविजन एक सपना था। क्रिकेट मैच के दौरान गलियों के नुक्कड़ पर एक छोटे से ट्रांजिस्टर को कान से सटाए पूरी भीड़ थम जाती थी। गेंदबाज के दौड़ने से लेकर चौके छक्के के रोमांच को आकाशवाणी की कमेंट्री ने हर दिल की धड़कन बना दिया था। इतिहास गवाह है, चाहे 1962, 1965 या 1975 के युद्ध के कठिन दिन रहे हो या फिर कोई भीषण प्राकृतिक आपदा, जब संचार के सारे साधन टूट जाते हैं तब आकाशवाणी देश का हौसला बनता है, अफवाहों को थामता है और सही राह दिखाता है। समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए आकाशवाणी ने खुद को हर दौर में नया रूप दिया। मीडियम वेब के सफर से निकलकर आज ये FM, लाइव स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्स और पॉडकास्ट के जरिए सीधे आज युवाओं की पॉकेट में पहुंच चुका है।

श्रोताओं, ये 90 साल सिर्फ एक प्रसारण सेवा के साल नहीं, ये कहानी है आपकी, हमारी और उस हर भारतीय की जिसने बचपन में रेडियो की सुई घुमाते हुए दुनिया को देखना सीखा। 90 साल का ये सफर वाकई अनोखा है और हवा की लहरों पर तैरता ये कारवा आगे भी यूं ही अनवरत चलता रहेगा। समय की सुइयां चलती रहेंगी, दौर बदलते रहेंगे, लेकिन आकाशवाणी की ये आवाज कभी नहीं थमेगी। ये आवाज हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाती है, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म इम्तिहान का ये गीत हमें संदेश देता है कि चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें रुकना नहीं है।

कांटों पे चल के ही वाकई में हमें रास्ते मिल जाते हैं बाहर के, इसलिए जीवन में भी हमें मुश्किलों से हार नहीं मानना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी आप सुन रहे थे फिल्म इम्तिहान से किशोर कुमार की आवाज में। बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्रोताओं, जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि जीवन का आधार शायद वहीं कहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अस्तित्व की असली कहानी आसमान में नहीं बल्कि हमारी धरती के उस नीले हिस्से में छिपी है जिसे हम महासागर कहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस अनंत समंदर की जो सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि जीवन का असली स्रोत है। और आज यानी कि 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस मनाते हैं और इस खास दिवस पर आपके लिए हम बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं ये अहम जानकारी।
1: पानी की हर बूंद में आने वाले कल की कहानी है। महासागर का नाम आते ही हमें पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन का याद आ जाता है, जिसमें भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप से मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा था और दैत्यों को अमृत का लालच दिया था। यह समुद्र क्षीर सागर ही था जिसे आज हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। वैसे महासागर के बारे में कहा जाए तो इसका वर्णन एक शब्द में नहीं हो सकता। महासागर पृथ्वी के 70% से अधिक भाग पर विस्तारित है। यह हमारा जीवन स्रोत भी है जो मानवता और पृथ्वी पर हर दूसरे जीव के जीवन को प्रभावित करता है, सहारा देता है। जैसे पृथ्वी अनंत है, उसे एक शब्द से नापा नहीं जा सकता, वैसे महासागर भी एक शब्द से नापा नहीं जा सकता। इनका संबंध बहुत गहरा है। पृथ्वी और महासागर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। महासागर में हलचल होता है तो इसका प्रभाव पृथ्वी वासी पर पड़ता है। जैसे जंगल फेफड़े है, वैसे ही महासागर दिल है पृथ्वी के। जीवन जीने के लिए पानी बहुत ही जरूरी है, लेकिन पृथ्वी पर पानी लगभग 2% है। कई सागरों से महासागर बनते हैं, तो आइए अब सागर और महासागर के प्रकार एवं नाम पर चर्चा करते हैं। धरती पर पानी के रूप में मौजूद 1/3 महासागर ही है। सागर की तुलना में महासागर बड़े होते हैं। धरती पर कुल 5 महासागर है, जो कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये 5ों महासागर अपने विशालकाय रूप में जाने जाते हैं। अगर गहराई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले प्रशांत महासागर आते हैं, उसके बाद हिंद महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा है। मरियाना ट्रेंच पर इसकी गहराई 11,033 मीटर यानी करीब 11 किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका तक फैला है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि इसमें से एक महासागर का नाम हमारे ही देश के नाम से रखा है, जो कि है हिंद महासागर। इसका क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। दुनिया में लगभग 50 समुद्र है। महासागर खुले पानी का एक बड़ा पिंड है। आमतौर पर वहां पाए जाते हैं जहां भूमि और महासागर मिलते हैं। महासागर ग्रह की कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर है और दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अपने सभी लाभों के बावजूद महासागर को आज सहारे की आवश्यकता है। 90% बड़ी मछलियों की आबादी खत्म हो गई है और 50% कोरल रीफ नष्ट हो गए हैं। हम समुद्र से जितना पानी निकाल सकते हैं उससे कहीं ज्यादा ले रहे हैं। हमें समुद्र के साथ एक नया संतुलन बनाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। औद्योगिकरण के शुरुआत से ही पृथ्वी पर लगातार प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जिसका बड़े पैमाने पर शिकार बन रहे हैं। समुद्र के माध्यम से व्यापार भी बहुत बड़े पैमाने में किया जाता है। समुद्री व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जो समुद्र के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें महासागरों के पार माल और वस्तुओं की आवाजाही, दूर दराज देशों को जोड़ना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है। लेकिन इससे भी समुद्री प्रदूषण बढ़ रहे हैं। समुद्री प्रदूषण में जहाजों का बहुत बड़ा योगदान होता है, खासकर कच्चे तेल का रिसाव होता है, जिसके कारण प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय दिवस का उद्देश्य है लोगों को शिक्षित करना, वैश्विक समस्याओं को संबोधित करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा संसाधन जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय दिवसों का अस्तित्व राष्ट्र की

0: स्थापना से पहले का है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें एक शक्तिशाली वकालत उपकरण के रूप में अपनाया है। 8 जून को हम वैश्विक महासागरीय दिवस मनाते हैं। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जैव विविधता की रक्षा पर एक ऐतिहासिक समझौता किया। पहले से ही हाई सी संधि के रूप में संदर्भित कानूनी ढांचा समुद्री संरक्षण में अधिक धन और समुद्री अनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उपयोग को विस्तारित करेगा। महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी की संतुलन आदि की ओर राजनीतिक और सामाजिक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। दुनिया भर में हर साल विश्व महासागर दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। देश और दुनिया में आज प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इस वजह से हमारी प्रकृति को भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य महासागरों पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना है, ताकि नागरिकों की एक विश्वव्यापी आंदोलन को विकसित किया जा सके और महासागरों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया को एकजुट किया जा सके। आश्चर्य हमें इस बात का है, जो हमें बनाए रखता है उसे हमको बनाए रखना है। विश्व महासागर दिवस 2025 का विषय है कि ये वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक और विश्व महासागर सम्मेलन के उत्सव द्वारा चिन्हित है। इस नए दृष्टिकोण के साथ ये दिन उस आश्चर्य का जश्न मनाता है जो महासागर हमें प्रेरित करता है, इसकी सुंदरता, इसका रहस्य और हमारे जीवन और ग्रह पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। ये दिन हमें समुद्र के साथ हमारे गहरे संबंध की याद दिलाता है और जिज्ञासा ज्ञान और सामूहिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से निर्देशित निर्णयों के माध्यम से इसके संरक्षण का आह्वान करता है। क्या आप जानते हैं, महासागर हमारे ग्रह का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें भोजन, ऑक्सीजन और नमक प्रदान करते हैं। ये पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। एक महासागर की औसत गहराई 11,034 मीटर यानी के 36,230 फीट होती है। इसमें पृथ्वी के 80% जीव जंतु रहते हैं। महासागर में कई ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है जो समुद्र तल के नीचे छिपी हुई है। इसके अंदर अनेक जहाजों का भी मलबा जमा है। इसमें से कई जहाज सदियों पुराने हैं। क्या आप जानते हैं, महासागर का उत्पन्न पृथ्वी के अंदर चट्टानों से हुआ था। जैसे जैसे पिघली हुई चट्टानें ठंडी होती गई, उसमें जलवाष्प संघनित हो गया और क्रस्ट को एक आदिम महासागर से ढक दिया। आज भी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से गर्म गैसें महासागर के तल पर नया पानी पैदा करने का काम करता है। इसलिए तटरेखा से लेकर गहरे समुद्र तल तक महासागर जीवन से भरा है। हजारों की संख्या में समुद्री प्रजातियां सूक्ष्म शैवाल से लेकर पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े प्राणी ब्लू व्हेल तक इसमें शामिल है। महासागर पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले स्थान है। इसके अंदर जीवों और पेड़ पौधों की लाखों प्रजातियां निवास करती है। महासागर पर्यटन, मछली पकड़ने और समुद्री परिवहन कार्य गतिविधियों का केंद्र होते हैं। लेकिन बहुत सारे कारण से महासागर प्रदूषित हो रहे हैं, जैसे प्लास्टिक, रसायन और तेल जैसी वस्तुओं के कारण महासागरों में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ चुका है। दूसरा ये कारण है कि जलवायु परिवर्तन, जिसका मुख्य कारण है महासागर अधिक गर्म हो जा रहे हैं, उनके अम्लीय स्तर में भी वृद्धि हो रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि अत्यधिक मछली पकड़ना। मनुष्य के द्वारा महासागर में अत्यधिक मछली पकड़े जाने के कारण मछलियों की कुछ प्रजातियां तेजी से कम होने लगी है, जो कि समुद्र की जैव विविधता के लिए एक चिंताजनक बात है। वैश्विक स्तर पर महासागर दिवस मनाने की पहली बार 1992 में कनाडा सरकार द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी। इस प्रस्ताव को प्रतिनिधियों ने भरपूर समर्थन की थी। तो आइए इस दिवस के अवसर पर हमें महासागर के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले ये कोशिश करना है कि प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग कम से कम करें। हो सके तो अपने शहर के समुद्र तट पर जाकर समुद्र तट की सफाई करें। दूसरों को महासागरीय संसाधनों के बारे में समझाए, उसे ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। साफ सफाई रखना 90% मनुष्य के हाथ में ही रहता है, चाहे वो पृथ्वी पर हो या समुद्र में। स्वच्छ रखने से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और इससे वातावरण और समुद्र भी प्रभावित होंगे। महासागर का सम्मान करना यानी पृथ्वी का सम्मान करना है। आखिर स्वस्थ समुद्र ही आधार बनेगा स्वस्थ ग्रह का, सुखद जीवन का।
1: पृथ्वी पर महासागरों की महत्ता, इस विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी निवेदिता मिश्रा। बता दें कि इस जानकारी का पुनः प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, जिंदगी बेहद खूबसूरत है, लेकिन साथ ही अनिश्चितताओं से भरी है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ऐसे में क्या हमारे पास कोई ऐसा सुरक्षा कवच है जो मुश्किल वक्त में हमें और हमारे परिवार को संभाल सके? इसी मजबूत कवच का नाम है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सरकार की उन योजनाओं की जो केवल कागजी नहीं बल्कि आपके हमारे सुरक्षित भविष्य की असली बुनियाद है। श्रोताओं, सामाजिक सुरक्षा योजना उन लोगों के लिए है जो मेहनत मजदूरी करता है, रेहड़ी पटरी लगाता है या खेतों में पसीना बहाता है। जी हाँ, केंद्र सरकार की 3 ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में हर भारतीय को जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, जो एक दुर्घटना बीमा योजना है। सिर्फ एक मामूली सालाना प्रीमियम पर, भगवान ना करे अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु या पूरी विकलांगता होती है, तो परिवार को 2,00,000 तक की आर्थिक मदद मिलती है। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी एक जीवन बीमा योजना है। इसका प्रीमियम भी बेहद किफायती है। अटल पेंशन योजना भी एक ऐसी योजना है जिसमें 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन मिलती है। यानी कि सिर्फ कुछ रुपए बचाकर हम अपने परिवार को एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन योजनाओं से जुड़ना भी बेहद आसान है। आपके पास बस एक बैंक खाता या डाकघर खाता होना चाहिए और आधार कार्ड। आप सीधे अपने बैंक जाकर या नेट बैंकिंग के जरिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, इन योजनाओं का लाभ उठाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। बहरहाल हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। तो लीजिए सुनिए FM के 102.4 MHz पर ये गाना।

आतिफ असलम की प्यारी सी आवाज में अभी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल के लिखे गीत को अजब प्रेम की गजब कहानी से। संगीत निर्देशन था प्रीतम का। और श्रमिक श्रोताओं, इसे गाने के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक को यहीं संपन्न करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मंजू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान

0: किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Defence Investiture Ceremony is underway at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. President Draupadi Murmu is presiding over the ceremony. During this prestigious event, the President conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces, and State and Union Territory Police. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kewat, and Ramesh Durg Deshmukh were awarded Shauri Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. West Bengal has become the 36th state and union territory in the country to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The scheme provides health cover of up to 5,00,000 rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and Government of West Bengal signed an MOU in New Delhi today for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. The Trinamool Congress, or TMC, led by Mamata Banerjee today, moved the Calcutta High Court, challenging the decision of West Bengal Assembly Speaker to recognize Rituprat Banerjee as the leader of the opposition in the Legislative Assembly. According to reports, TMC has contended that Speaker's decision to appoint Rituprat Banerjee as leader of the opposition is contrary to established parliamentary norms and procedures. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia. In a statement, the External Affairs Ministry said that these developments are a matter of utmost concern to the international community. India has called on all parties to immediately de-escalate tensions and ensure that civilians are not harmed. The ministry also appealed to conclude ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The statement comes as Israel and Iran traded fresh missile attacks, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. The Indian Embassy in Iran has also advised international

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुनी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं निरोध बरन मन्ना और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज आपने सुना कुरमाली लोकगीत, कलाकार थे निरोध वरन मन्ना और साथी। ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: प्रणाली विषये अनियमितता सन्दर्भे केन्द्र सर्वकाराय तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम् भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानाम् आक्रमणानां विषये गभीरा चिन्ता प्रकटिता आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम् अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत दलम् अफगानिस्तान दलम् एकेन वारेणैव 300 धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयम् अभिलेखितवत् इदानीं वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः अभवत् तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत् येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जनधन योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणं स्वच्छ भारत अभियानं पीएम आवास योजना जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम् अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुम् अपि आसीत् निर्धन जनानां जीवनस्तरे स्वस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं अपने सपने हैं
0: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते एतेन सा योजना सम्पूर्णेपि देशे कार्यान्विता भविष्यति स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम् राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुनी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आकाशवाणी प्रसारण सेवा के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी सुनी श्रोताओं को पूरी आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूं मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी। कृषक मित्रों, आज के अंक में 1 जून से 30 जून तक चलाई जा रही खेत बचाओ अभियान विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह और डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। लोकगीत के साथ सुनिएगा जरूरी सूचनाएं और जानकारियां, लेकिन इन सबसे पहले बातें कर लेते हैं पॉली हाउस तकनीक से सब्जी की खेती और लाभ विषय के बारे में। किसान भाइयों और बहनों, आज कृषि जगत में हम बातें करेंगे एक ऐसे तकनीक की जो छोटी जमीन बड़ी कमाई का रास्ता खोल रही है। जी हाँ, पॉली हाउस खेती की। बरसात में टमाटर गल गया, लू में मिर्च झुलस गई, ओले में फूल गोभी टूट गई, ये शिकायत हर किसान भाई बहन की है। पर पॉली हाउस आ गया तो मौसम अब किसान का दुश्मन नहीं, साथी बन गया है। आइए जानते हैं पॉली हाउस क्या है। पॉली हाउस मतलब प्लास्टिक की छत वाला घर, लोहे या बांस का स्ट्रक्चर प्लस ऊपर यूवी प्लास्टिक की सीट। ये सीट धूप तो अंदर आने देती है, पर बारिश, ओले, तेज हवा, कीड़े मकोड़े बाहर ही रोक देती है। अंदर का तापमान और नमी कोई भी किसान भाई बहन खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब दिसंबर में भी गर्मी में कौन सी सब्जी और जून में भी ठंड वाली सब्जी उगा सकते हैं। इसे सुरक्षित खेती भी कहते हैं। पॉली हाउस में कौन सी सब्जी झारखंड के किसान भाई बहन सबसे ज्यादा उगा रहे हैं,

0: आइए जानते हैं। टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा इनकी सबसे ज्यादा मांग है और सबसे ज्यादा दाम भी है कि इन्हीं की खेती भी हो रही है। खीरा, लौकी, बेल वाली सब्जी लटकाकर उगाने से जमीन कम लगती है। खास बात, एक बार बीज लगाने के बाद 8 से 10 महीने तक लगातार तुड़ाई कर सकते हैं। खुले खेत में 3 महीने, पॉली हाउस में 10 महीने फसल पकते रहती है, जब चाहे तोड़ सकते हैं। और आइए अब जानते हैं पॉली हाउस तकनीक से आप किसान भाई बहनों को क्या फायदा मिलता है। 5 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला है उत्पादन 3 से 5 गुना। खुले खेत में 1 एकड़ टमाटर 150 क्विंटल, वहीं पॉली हाउस में 500 से 600 क्विंटल तक। दूसरा, कीटनाशक 70% कम। प्लास्टिक की छत के कारण तितली, माहू, सफेद मक्खी अंदर नहीं आ पाती, तो दवा का खर्चा बचा, खाना भी सुरक्षित हुआ। और तीसरा, पानी 50% कम। ड्रिप इरिगेशन से बूंद बूंद पानी सीधे जड़ में जाती है। मिशन लाइफ का पानी बचाओ मंत्र यहीं पर काम आता है। चौथा, साल भर आमदनी। जब बाजार में सब्जी नहीं होगी तब आपकी सब्जी आएगी। ऑफ सीजन में टमाटर 80 रुपए किलो तक भी बिकता है। पांचवा, मौसम की टेंशन खत्म। ओला गिरे, आंधी आए, बेमौसम बारिश हो, फसल सुरक्षित, बीमा का पैसा भी बचता है। सरकारी मदद क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं। डरिए मत, खर्चा ज्यादा है पर सरकार मदद दे रही है। पीएम कृषि सिंचाई योजना बागवानी मिशन के तहत 50% से 90% तक अनुदान देती है। एससी एसटी महिला किसान है तो 90% तक सब्सिडी मिलती है। 1 एकड़ पॉली हाउस पर 10 से 12 लाख खर्च पर सब्सिडी के बाद किसान भाई बहनों को 2 से 3 लाख ही देना पड़ता है। साल में पैसा वसूल हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला उद्यान पदाधिकारी या किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 यानी 1800-180-1551 पर कॉल कर सकते हैं। साथियों, जमीन कम है तो टेंशन मत लीजिए, पॉली हाउस तकनीक अपनाइए। कम जमीन, कम पानी, कम दवा और ज्यादा आमदनी, यही है विकसित भारत की खेती। स्मार्ट खेती, सुरक्षित खेती। आज ही अपने खेत का एक हिस्सा पॉली हाउस के लिए जरूर सोचिए। स्वस्थ रहिए, समृद्ध बनिए। मित्रों, यह थी जानकारी पॉली हाउस तकनीक से सब्जी की खेती और लाभ के बारे में। और आइए अब आपको 1 जून से 30 जून तक चलाई जा रही खेत बचाओ अभियान विषय पर बाहें ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता सुनवाते हैं। भेंटवार्ताकार हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह और डॉक्टर रविन्द्र मोहन मिश्रा, और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी ने। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण भेंटवार्ता। किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बातें करने वाले हैं खेत बचाओ अभियान के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, खेत बचाओ अभियान जो 1 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है। इसमें आप सभी किसान भाई बहनों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और मिट्टी को बचाने के विभिन्न पहलुओं पर कैसे जागरूक किया जाए, इस पर बातें हो रही हैं। और आज हम बातें करने वाले हैं और हमारे साथ 2 विशेषज्ञ हैं। पहले हैं डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह जी और दूसरे हैं डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा जी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम खेत बचाओ अभियान में शामिल हो सकते हैं और अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। भूषण जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: भूषण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे खेत बचाओ अभियान को लेकर?
1: जैसा कि हमारे किसान बंधुओं को ज्ञात होगा कि भारत सरकार के द्वारा 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया है। इसका मकसद है कि किसानों को जागरूक करना, किसानों को सशक्त बनाना, और वो हमारा है सबसे पहले हमारी जो जमीन है, मिट्टी है, खेत है, उसको बचाना। खेत को बचाने के लिए सबसे बड़ा कारण है कि रासायनिक जितने भी संसाधन हमारे पास है, जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं, चाहे वो दवा के रूप में हो, उर्वरक के रूप में हो, उनका कम से कम व्यवहार अपने फसलों में, अपने खेतों में करें, और जिससे कि हमारा खेत जो है वो स्वस्थ रहे।
0: और अभी खरीफ का मौसम भी चल रहा है भूषण जी, की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: अभी खरीफ के मौसम को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है खेत बचाओ अभियान का, और इसमें हमारे पास जो है जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों को बढ़ावा देना है। सबसे पहले प्राकृतिक खेती को अपनाएं, प्राकृतिक संसाधन है उसका समुचित उपयोग करें और जैविक खेती को साथ में अपनाएं। रासायनिक

0: खेती को हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं तो अच्छा है और खेत को हम बचा सकते हैं। खरीफ मौसम है, धान की रुपाई और बुआई का समय आ चुका है, तो अब ऐसा है कि हमारे पास जो संसाधन है कि जो हम रुपाई करते हैं हमारे खेतों में, जैसा हमारे पास उपलब्ध है अच्छे किस्म जो धान का अच्छे किस्म है या दूसरे अन्य फसलों का, दलहन और तिलहन, इन फसलों को बढ़ावा देना, खास करके दलहन फसलों को बढ़ावा देना। जब दलहन का आयात किया जाता है तो आयात को कम करने के लिए, दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए, और दलहन फसल बढ़ेगा हमारा दाल का जो उत्पादन बढ़ने से समस्या खत्म होगा और खेत जो मिट्टी है वो स्वस्थ रह पाएगा। और हम लोग ये बतला रहे हैं कि फसल चक्र अपनाकर दलहन फसलों के साथ फसल चक्र अपनाएं और अपने खेतों को बचाएं, अपने मिट्टी को बचाएं, तो जैविक उर्वरक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। हमारे पास बहुत सारे जैविक उर्वरक हैं और जैविक जो भी रसायन है उनका इस्तेमाल करें, जैसे दलहन फसलों के लिए हम लोग राइजोबियम कल्चर बोलते हैं उसका इस्तेमाल करें, जो तिलहन फसल है और अन्य फसलें हैं उनमें जो है फॉस्फोसोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें, और जो जो हमारे पास केचुआ खाद है इनको, चाहे गोबर खाद है इनका इस्तेमाल, गोबर खाद को और अच्छा बना के उसका हम जो अच्छे सड़े हुए जो तैयार गोबर खाद है उनका इस्तेमाल करें और मिट्टी पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उससे बचाएं। तो ये हम लोग का एक मकसद होना चाहिए और इस अभियान से जितने किसान जुड़ेंगे लोगों तक मैसेज जाएगा कि खेत को बचाना है और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके। हमारे पास सूर्य का ताप है, जो मिट्टी का जो हमारा जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और बाहरी जो वायुमंडल का तापमान है वो भी बढ़ रहा है, ये हमारे फसलों के ऊपर काफी प्रभाव डाल रहे हैं और फसल में रोग बीमारी कीड़े का प्रकोप बढ़ रहा है। तो इनको संतुलित करने के लिए, इनको रोकने के लिए हमारे मिट्टी को सशक्त बनाना होगा और उसके लिए हमारे पास प्राकृतिक जो जितने भी संसाधन है उसका और जैविक जो संसाधन है उसका उपयोग करके ही हो सकता है। फिर मिट्टी के जल धारण क्षमता को बढ़ाना, जब हमारे यहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है लेकिन उस जल को, उस पानी को रोक नहीं पाते हैं, तो मिट्टी जब स्वस्थ रहेगा, मिट्टी का जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो उसका पोर स्पोर्स है, जो छिद्र है मिट्टी में, उस वो अच्छा रहे, तो उसके लिए हमारे पास जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के माध्यम से ही हो सकता है, रासायनिक खेती से नहीं हो सकता है। रासायनिक खेती उन सब चीजों में कमी करती है और एक लेयर बन जाता है जो कि मिट्टी में जल, हमारा जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता है, वो बह के नदी नालों में चला जाता है। तो इन सब चीजों को अगर किसान भाई ध्यान में रखते हैं तो काफी लाभप्रद होगा और अधिक से अधिक जानकारी एक दूसरे किसानों को देते रहें तो ये अच्छा होगा। नए नए तरह के फसल का जो है, फसल विविधीकरण के माध्यम से एक ही फसल को लगातार अपने खेतों में ना लगाएं, खेत जो फसलों का बदलाव करते रहें जिससे कि रोग बीमारी कीड़े इनका प्रकोप कम हो पाएगा। कंटिन्यू एक ही तरह के एक प्रजाति के फसल जब लगाते हैं तो हमारे पास समस्याएं उत्पन्न होती है। यही हमारा सुझाव रहेगा किसानों को कि फसल चक्र को अवश्य अपनाएं और साथ में जो है जो दलहन फसल का हरी खाद का इस्तेमाल करें, जैसे मूंग धैचा इन सबको लगा के, अभी लगा के और 25 से 30 दिनों में मूंग जो 25 दिनों में तैयार हो जाता है और उसका हरी खाद उसमें खेत में जुताई कर दें, खेतों की गहरी जुताई करें, गर्मी की जुताई होनी चाहिए था, तो ये अगर किसान करते हैं तो काफी लाभ मिलेगा।
1: भूषण जी बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई बहन इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और अपने खेत को संतुलित बनाए रखने के लिए, खेत को बचाए रखने के लिए, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़े रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद, जवाब नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, आइए बातें करते हैं इनसे।
1: रविंद्र मोहन मिश्रा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार
3: जी। नमस्कार,
1: क्या कुछ कहना चाहेंगे खेत बचाओ अभियान को लेकर?
3: जैसा कि निहित है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा अभी एक अभियान चलाया जा रहा है, खेत बचाओ अभियान, यह जून 1 से 30 तक यह अभियान चलेगा और इसमें विशेष करके किसानों को जागरूक करने की बात आ रही है कि किस तरह से वो अपने खेत, अपने मिट्टी को बचाएं, संरक्षित करें और जिस तरह से जो मिट्टी या जो खेत हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित किया गया है वह वही मिट्टी वही खेत वही टिकाऊपन हम अपने आने वाले पीढ़ियों को हस्तांतरित करें, क्योंकि जिस प्रकार से इस दौर में किसान या खेती हो रही है एक होड़ सी मची हुई है कि उत्पादकता बढ़ानी है और उसे हो रहा है या कि विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है और उन धड़ल्ले से प्रयोग होने के नतीजे ऐसे हो रहे हैं कि हमारी खेत हमारी मिट्टी दिन प्रतिदिन ऊसर होती जा रही है, हार्डनेस उसमें आ रहा है, उसमें जलधारक क्षमता कम होती जा रही है, उसमें बहुत प्रकार की समस्याएं, उसमें जो जैव पदार्थ हैं, उसमें जैविक जीवाणु हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे खेतों में मिट्टियों में अभी केचुआ नहीं दिखाई देते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं इसको तुरंत रोकने की आवश्यकता है। किसानों को सूझबूझ और जागरूक होते हुए अपने मिट्टी को बचाने की आवश्यकता है ताकि हम अगले पीढ़ी आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा सुंदर मिट्टी दें ताकि वो लोग भी अपने जीवन यापन आसानी से कर सकें।
1: और अभी खरीफ का समय चल रहा है और आप तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसकी तैयारी को लेकर के?
3: किसान भाई, मेरा ये सुझाव होगा कि अभी चूंकि जंगल क्षेत्र है, हमारा पठारी क्षेत्र है झारखंड, और हमारे लिए प्रकृति प्रदत्त जंगल है और जंगल में पतझड़ होते हैं, जंगल में जो पतझड़ है उसके पत्ते सड़ गल के बरसात की जो बारिश होगी वो बहकर खेतों में जाएगी, तो खेत में जो पानी बह के आएगी उसको संरक्षित करना, उसकी जो उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, जो जैव पदार्थ जंगलों से बह के आपके खेतों में आ रहे हैं उसको रोकने की आवश्यकता है ताकि हमारी जो जैव पदार्थ है मिट्टी में उसका बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पठारी भूमि के अधिकतर जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी है, तो इसमें अगर हम लोग के ऑर्गेनिक मैटर्स बढ़ते हैं तो अम्लीयता को काफी हद तक कम करने में, या जो आप उसके लिए जो उपचार करेंगे जब तक ऑर्गेनिक मैटर जैव पदार्थ उसमें नहीं रहेंगे तो उसमें खेत की जो एसिडिटी है या अम्लीयता है उसको हम लोग कम करने में मैनेज करने में विफल रहेंगे। तो मेड़बंदी सबसे पहले किसान करें, अगर खेत में नमी है तो वो गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी पलट हो, और जैव पदार्थ जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप अपने खेतों में उसको डालें, चाहे वो गोबर खाद हो या सुकर के मलमूत्र हो या बकरी भेड़ के मलमूत्र हो या पोल्ट्री बीट्स हो, इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में डालें सड़े हुए, और इस तरह से अपने तैयारी करें खरीफ के पहले। और दूसरा ये बात है कि जब तक ऑर्गेनिक मैटर नहीं आप अपने खेतों में डालिएगा तब तक उसके जलधारक क्षमता भी अच्छी नहीं होगी, और उसमें जो जीवांश है उसकी भी जो डेवलपमेंट है उसको भी विकास करने में ये जैव पदार्थ का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको किसान तत्पर होके करें, और अभी जो हमारी पौराणिक पद्धतियां थी उसको भी पुनर्जीवित करने की बात आ रही है कि हम लोग जीवामृत का प्रयोग करें, हम लोग इस तरह से गोबर गौमूत्र दही दूध बेसन इत्यादि को मिला के और जो भी आपके पास स्थानीय पदार्थ हैं उसको सड़ा गलाकर उसको खेतों में अगर हम लोग डालते हैं इससे भी हम अपने जैव पदार्थ को और जैव जीवाणुओं को भी हम अपने खेतों में बढ़ा पाएंगे।
1: संदेश क्या देना चाहेंगे अंत में, पूरी दुनिया भी आपको सुन रही है?
3: आप जागरूक हों, अपने मिट्टी को पहचाने, मिट्टी के कराह को समझिए, सुनिए, सुनने का प्रयास करिए, और मिट्टी को धीरे धीरे जैव उर्वरकों से भरिए। आपके पास जितने भी उस तरह के जैव पदार्थ हैं जो हम लोग ऐसे वैसे फेंक देते हैं जला देते हैं उसको तरीकाबद्ध उसको सड़ाना है, उसको खाद बनाना है और अपने खेतों में डालना है, ये सबसे जरूरी है। और खेत में फसल चक्र को अपनाना है, एक फसल बार बार अगर लेते हैं तो खेत की जो उसकी जो गुणवत्ता है उसमें ह्रास होती है, उसको आप परिवर्तित करने का प्रयास करिए। जिस खेत में आप लगातार धान लेते हैं तो कभी कभी ऐसे सीजन में उसमें हरा खाद के रूप में मूंग ले सकते हैं, ढैचा ले सकते हैं, सनई वगैरह ले सकते हैं, और उसको अपने मिट्टी में उसको मिलाने से उसमें बहुत तरह के जैव पदार्थ की वृद्धि होती है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों को आपको अपनाना है, अमल में लाना है और अपने खेत को मजबूत करना है, अपने खेती को टिकाऊ बनाना है।
1: तो किसान भाई बहनों, ये थे रविंद्र मोहन मिश्रा जी, और हमारे साथ थे डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह जी, जो बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे कि किस प्रकार से हम अपने खेत को बचा सकते हैं, और अभी का जो समय है वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और जो उर्वरक है उनके संतुलित प्रयोग पर आधारित है। और अभी मिट्टी को भी बचाने की बहुत जरूरत है, हम लोगों को सीखना होगा और सतत जागरूक भी रहना होगा कि किस तरह से हम अपनी मिट्टी को संरक्षित करें और किस तरह से अपने खेत

0: को बचाए। रविंद्र मोहन मिश्रा जी और भूषण प्रसाद सिंह जी, इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: या आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

किसान भाई बहनों, अभी आप खेत बचाओ अभियान विषय पर डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह और डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा जी से ली गई भेंट वार्ता का प्रसारण सुन रहे थे। बाह्य ध्वनि अंकन पर टेलीफोनिक आधारित थी यह भेंट वार्ता। और आइए अब थोड़ी बातें कर लेते हैं विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के बारे में। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मस्तिष्क ट्यूमर के शुरुआती लक्षणों, इसके कारणों और बचाव के बारे में जागरूक करना तथा मरीजों का मनोबल बढ़ाना है। इसे पहली बार वर्ष 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को जल्दी पहचानने और समय पर चिकित्सा सहायता लेने की महत्व की भी याद दिलाता है। अब एक नज़र मौसम पर। कार्यक्रम कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारत मौसम विभाग नई दिल्ली, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली, क्षेत्रीय प्रभाग रांची और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा प्राप्त मौसम के संदर्भ में कहा गया है कि जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और इसके आसपास के क्षेत्रों में सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहेगा, परंतु दोपहर बाद इस सप्ताह भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय और दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज बिजली होने की संभावना है। हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती हैं। आज दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। कल दिनांक 9 जून 2026 दिन मंगलवार को अधिकतम तापमान रह सकता है 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी 75% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 38% रहने की संभावना है। हवा की दिशा होगी दक्षिण से पूर्वोत्तर की ओर और रफ्तार रहेगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मित्रों, मौसम की जानकारी के बाद एक नज़र बाजार भाव पर। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसूडी जिला पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त बाजार भाव कुछ इस तरह से है। चावल में उष्णा उत्तम किस्म का भाव रहा 5870 से 5888 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम 3780 से 3790 रुपए प्रति क्विंटल, अन्य 3270 से 3345 रुपए प्रति क्विंटल। अरवा उत्तम किस्म का भाव रहा 5890 से 6280, मध्यम 3879 से 4470 और अन्य 3478 से 3557 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दालों में अरहर का भाव रहा 12290 से 12349, चना दाल का भाव रहा 8469 से 9455 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल का भाव रहा 7987 से 8998 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं मूंग दाल का भाव रहा 11534 से 11875 रुपए प्रति क्विंटल। कृषक मित्रों, यह थी बाजार भाव की सूचना। और अब आइए सुनते हैं वीणा पानी महतो और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत।

किसान भाई बहनों, अभी आप वीणा पानी महतो और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत सुन रहे थे। आइए अब बातें जिला पशुपालन कार्यालय से। मित्रों, अगर आप चलंत मेडिकल का लाभ और अपने पशुओं के लिए लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल वेटरनरी यूनिट की निःशुल्क नंबर 1962 से संपर्क कर सकते हैं। यह पूरी तरह निःशुल्क है और इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। अब अपने रेडियो मित्र अनिमेश को दीजिए अनुमति और आप रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।

किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे, यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हो रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापन और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देश में कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं। खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, केंद्र सरकार ने जताया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज। एनडीए ने परिमल नाथवानी को दिया समर्थन। इंडिया गठबंधन भी जीत को लेकर आश्वस्त। झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ। हाईकोर्ट ने सरकार के कदम पर संतोष जताया। खाद वितरण में पारदर्शिता लाने की पहल। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ देवघर। आधार प्रमाणीकरण के बाद मिलेगा उर्वरक। और साइबर अपराध से निपटने के लिए झारखंड पुलिस के 78 कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। डिजिटल फ्रॉड और डार्क वेब की जांच सीखेंगे पुलिस कर्मी। रांची में प्रशिक्षण शुरू। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए 380 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान है, जबकि अब तक किसान लगभग 86 लाख मीट्रिक टन उर्वरक खरीद चुके हैं। राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन है।
1: हम लोग के कॉन्फिडेंस में तो कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। हम लोग के पास पर्याप्त संख्या है और दो प्रत्याशी के साथ महागठबंधन मैदान में है। लेकिन इस राज्य में फिर से जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास भाजपा कर रही है, उसके बारे में बताएं।
0: वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम दलित समाज से आते हैं और स्थानीय उम्मीदवार हैं, इसलिए भाजपा को भी उनका समर्थन करना चाहिए।
2: आज तक भाजपा ने कभी इस दलित को यहाँ से राज्यसभा नहीं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रतिनिधि है वैद्यनाथ राम, वो स्थानीय भी है और पहली बार कोई दलित यहाँ से राज्यसभा जाएगा, तो उनको वैद्यनाथ राम जी के पक्ष में वोट करना चाहिए।
0: दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल भी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने कहा कि वे भाजपा के हर निर्णय के साथ हैं।
3: उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी इसमें हम लोग उसके साथ रहेंगे। इसमें कोई उचित अनुचित के बारे में सोचने की बात नहीं है, पहले ही स्पष्ट कर दिया था हमने। जैसा भी करें, भाजपा के लोगों ने जो तय किया है हम लोग उसके साथ रहेंगे। हम लोग बहुत होगा तो उनको अपना वोट दे रहे हैं।
0: नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन करने का निर्णय लिया है।
4: सब लोग बार बार पूछते थे कहां से लाइएगा, तो हम लोगों ने इसलिए दल की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं दिया। हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई, परिमल नाथवानी जी पहले भी यहां से दो दो बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं, तो हम लोगों ने तय किया भाई एक ट्रस्टेड व्यक्ति है, उसको सपोर्ट कर।
0: नई दिल्ली में आज दोपहर इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित हुई। विभिन्न विपक्षी दलों के नेता बैठक में भाग लिया। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बैनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले शामिल हुए। झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका का झारखंड उच्च न्यायालय ने निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है और इस संबंध में संकल्प भी जारी किया जा चुका है।

0: आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने के लिए झारखंड के देवघर जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने यह जानकारी दी। इस परियोजना के तहत आज देवघर के सूचना भवन में जिले के थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर उनकी राय ली जा रही है, जिससे शहरों की स्वच्छता रैंकिंग तय की जाती है।
1: हजारीबाग सहित देश के सभी जिलों में स्वच्छता का रैंकिंग चल रहा है कि जो शहर जितना अच्छा होगा फीडबैक के आधार पर जनता जो वोट करेगी उसे उनकी रैंकिंग होगी और फिर जैसे देश में उनका नाम होगा और उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। इंदौर हमारे पल में आता है, हम चाह रहे हैं कि जो छोटे शहर में हजारीबाग गिनती होती है हजारीबाग टॉप 10 में आ जाए, इसलिए हमारा प्रयास चल रहा है।
0: राज्य भर में पोलियो मुक्त अभियान चलाया जाएगा। धनबाद जिले में भी 28 जून को आयोजित पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 4,24,729 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी। सिख पंथ के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव की 401वीं शहादत के मौके पर पूर्वी सिंहभूम के जिला न्यायालय परिसर में विशेष छबिल का आयोजन किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, न्यायिक पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। रांची के पिठौरिया क्षेत्र में 2 जून को हुए जानलेवा

0: सेवा हमले के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मदनपुर निवासी फिरोज अंसारी पर हत्या की नियत से गोली चलाई गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रारंभिक जांच में मामला वर्ष 2022 के एक हत्या केस में गवाही को लेकर विवाद से जुड़ा पाया गया है। रांची में साइबर अपराध अनुसंधान पर 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें झारखंड पुलिस के 78 पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के विशेषज्ञ डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल साक्ष्य, सोशल मीडिया अपराध, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामलों की जांच की जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की साइबर अपराध जांच क्षमता को मजबूत बनाना है। जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में अंपायरिंग कर लौटी रांची की नीतू कुमारी का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। नीतू 29 मई से 6 जून तक जापान के काका मेगाहारा में आयोजित प्रतियोगिता में अंपायरिंग करने वाली झारखंड की दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर बनी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं, खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, केंद्र सरकार ने जताया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज, एनडीए ने परिमल नाथवानी को दिया समर्थन, इंडिया गठबंधन भी जीत को लेकर आश्वस्त। झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार के कदम पर संतोष जताया। खाद वितरण में पारदर्शिता लाने की पहल, केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ देवघर, आधार प्रमाणीकरण के बाद मिलेगा उर्वरक। और साइबर अपराध से निपटने के लिए झारखंड पुलिस के 78 कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, डिजिटल फ्रॉड और डार्क वेब की जांच सीखेंगे पुलिसकर्मी, रांची में प्रशिक्षण शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद जिले में बीते सप्ताह विधानसभा की ध्यानाकर्षण विशेष समिति की बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त कार्यालय में लंबित बीसीसीएल से जुड़े सभी सीएनटी के मामलों को एक माह के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अंचल कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों का भी एक महीने के अंदर निपटारा करते हुए आवश्यक अनुमति देने पर सहमति बनी। समिति सदस्य निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि बैठक में यह भी तय हुआ कि जिन रयतों की जमीन पर बीसीसीएल द्वारा ओबी डंप किया गया है उन्हें भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
2: जितने भी पेंडिंग सीएनटी केसेस है जो उपायुक्त के कोर्ट में, उसको इमीडिएटली

0: बोला गया था कि बीसीसीएल उसको जो डायरेक्ट रैयत से वो परचेज कर सके।
1: धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कल विद्यार्थियों के शैक्षणिक करियर और व्यक्तित्व विकास को लेकर धनबाद कोचिंग एसोसिएशन ने मार्गदर्शन 4.0 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 52 कोचिंग संस्थानों के 520 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीबीएमकेयू के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने कहा कि आज तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आए हैं, लेकिन गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहेगा।
2: एआई व्यक्ति का न विकल्प था, न है, न होगा, जो जितना आप पूछेंगे उतना ही बताएगा। उसके पीछे का भाव एआई अभी तक जितना है वो नहीं समझ पाएगा, इसीलिए गुरु का स्थान पहले भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
1: धनबाद पुलिसिंग को और प्रभावी व जवाबदेह बनाने की दिशा में बीते सप्ताह पुलिस केंद्र में विशेष ब्रीफिंग कार्यशाला की शुरुआत की गई है, जिसमें जिले के एसआई स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि अब तक डीएसपी, थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर स्तर के अधिकारियों को ब्रीफिंग दी जाती थी, लेकिन अब धनबाद पुलिस ने नई व्यवस्था के तहत सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सीधे ब्रीफ करने का निर्णय लिया है, ताकि निर्देशों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
3: लगभग 850 ऑफिसर्स हैं सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक, जिसमें लगभग 340 सब इंस्पेक्टर और बाकी 500 प्लस एएसआई। तो हम लोग बहुत दिन से ये फील कर रहे थे कि हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो टाइम टू टाइम थाना प्रभारी को, डीएसपी को, सर्कल इंस्पेक्टर्स को देते हैं और वो भी डाउन द लाइन इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और उससे फिर काम होता है। हम लोगों ने महसूस किया कि एक बार हम लोगों को डायरेक्ट जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो ऑन फील्ड हैं, एएसआई हो या सब इंस्पेक्टर हो, सबको हम लोग बताएं कि उनसे क्या उम्मीद है, कैसी पुलिसिंग अभी हम लोग चाहते हैं, किस प्रकार से जनता के एक्सपेक्टेशन है उस पर हम लोग खड़ा उतरे, उसी को लेकर के बैच स्टार्ट किया गया है।
1: कार्यशाला में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने समेत अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने 1000 गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
4: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 और 48 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं बंगला कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी की जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पे। आज दिन सोमवार है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अपने।

0: श्रोताओ, 23 जुलाई 1927 को भारतीय उपमहाद्वीप में संगठित प्रसारण की शुरुआत हुई, लेकिन ये प्रसारण गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा होता था। 1936 में इन सारी प्रसारण संस्थाओं को मिलाकर तत्कालीन भारत सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत की। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये संयोग की बात है कि आज बहुत वर्ष पहले आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम से जुड़ी ममता मिश्रा हमारे बीच हैं। यूं कहें कि एक अंतराल के बाद आज मिलना, यानी युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में मिलना, इसे संयोग ही कहेंगे कि आज के ऐतिहासिक दिन में वो भी बुजुर्गों के कार्यक्रम हमारे अपने में उनसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और कुछ यादें ताजा करते हैं। तो ममता जी नमस्कार।
1: नमस्ते शिखा जी।
0: तो ममता जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी से कैसे जुड़ी।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है शिखा जी। मैं तब आज से करीब 28 वर्ष पहले जब स्टूडेंट थी, मैं स्कूल कॉलेज में भी हमेशा अव्वल रहती थी परफॉर्म करने में, कविता कहानी आलेख उसमें भी हमेशा मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। और हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे तो वो हमेशा युवाओं को बहुत प्रमोट करते थे, और उनमें से मैं भी एक छात्रा थी उनकी। अच्छा। पसंदीदा छात्रा। तो मुझे वहीं से एक तरह से प्रेरणा मिला उनसे भी, और हमारी जो प्रिंसिपल थी उनसे भी प्रेरणा मिला कि लड़कियां किसी से कम नहीं है अब
0: जी,
1: और कलम की जो ताकत होती है वो हमेशा हमें आगे ही बढ़ाती है। तो मैंने हमेशा अपने कलम को पकड़ के रखा।
0: अच्छा, लेकिन रेडियो तो आवाज की दुनिया है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: इससे जुड़ाव आपका कैसे हुआ?
1: रेडियो से जुड़ाव ऐसा हुआ शिखा जी कि जब हम बचपन से ही अपने घर में, हम छोटा उस समय रेडियो ट्रांजिशन होता था, तो उस समय हम सुनते थे, क्रिकेट देखते थे, गाना लता जी की, हमारे घर में 2 बजे प्रोग्राम आता था हमेशा, तो उनका प्रोग्राम हमेशा घर में, रेडियो हमेशा हम सुनते थे। तो मैं गाने से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम था। मैं वैसे कहूँ तो मैं कभी बाथरूम सिंगर नहीं रही।
0: अच्छा।
1: मैं हमेशा मंचों पे ही रही ज्यादातर, लोगों के बीच में मुझे बोलना सुनना बहुत अच्छा था। तो वो एक सुनने का जो दौर था, तो सच कहें तो बचपन से आया। अपने चाची को सुनती थी मैं हमेशा।
0: अच्छा।
1: मेरी चाची भी बहुत अच्छा गाती थी, तो उनको देती, और वो हमेशा, मेरे चाचा जी भी मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे कि कुछ भजन सुनाओ। तो मैं भागवत गीता और रामायण से मुझे बहुत जुड़ा।
0: अच्छा।
1: तो मैं उनके जो दोहा वगैरह होते थे, तो वो कहते थे स्वरचित कुछ सुनाओ, स्वरचित सुनाओ। तो वो सुनते सुनते फिर जब आप स्कूल कॉलेज जब करते हैं, तो वो हमेशा मन में रहा कि कुछ करना है, कुछ करना है।
0: अच्छा।
1: और फिर यहाँ तक का सफर।
0: अच्छा, तो सुनते सुनते आपको लगा कि क्यों ना मैं भी आवाज की दुनिया से जुड़ जाऊं, ताकि आपकी आवाज भी लोगों तक पहुंचे।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने हमारे मन की बातें आपने एक तरह से पूछ ली।
0: तो सबसे पहले आप आकाशवाणी से किस तरह से जुड़ी, किस कार्यक्रम से जुड़ी आप?
1: सबसे पहले मेरा कार्यक्रम हुआ था युवाणी।
0: अच्छा।
1: तो उस समय हमारा ऑडिशन हुआ था, और बहुत बच्चों का ऑडिशन हुआ था, तो चांस की बात है कि मैं भी उसमें सम्मिलित, तो मुझे भी ये मौका मिला। और
0: तो उस वक्त कार्यक्रम को प्रस्तुत करना आपको कैसा लगता था, किस तरह की खुशी आपको मिलती थी, क्योंकि आप आवाज की दुनिया से जुड़ रही थी, और जैसे ही आपने युवाणी कार्यक्रम ज्वाइन किया, तो उस समय आपने क्या महसूस किया?
1: उस समय हमें ऐसा महसूस होता था कि अपने आप में लगता था कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि उस दौरान ऑल इंडिया रेडियो बहुत बड़ी बात होती थी।
0: हाँ हाँ।
1: रेडियो में प्रोग्राम देना छोटी बात नहीं थी उस समय।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि शब्दों पे पकड़ होना, क्योंकि शब्द ही हमें सब कुछ सिखाते हैं, शब्द ही से हम किसी से जुड़ पाते हैं, जो बोलते हैं किसी को, ये हमारे भावनाएं व्यक्त करती हैं वो
0: जी।
1: तो उससे ये होता था कि जब एक तो स्कूल का पढ़ाई होता था, लेकिन जब इसमें प्रोग्राम देने की एक अलग उत्साह होती थी। और मेरा, सच कहूँ तो मेरा ज्यादातर प्रोग्राम कॉलेज का जो एग्जाम होता था उसी दौर में मेरा पड़ जाता था।
0: अच्छा।
1: तो उस समय मैं देखती थी और बच्चों को देखती थी करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए, तो मुझे भी बहुत खुशी होता था कि आप रेडियो में प्रोग्राम दे रहे हो, तो उसमें आपको कोई बनावटी नहीं आनी चाहिए वो
0: जी, जी।
1: जो, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते हुए रिलेट, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड ही होता था ज्यादा टॉपिक।
0: हाँ,
1: क्योंकि सर लोग भी समझते थे, क्योंकि हम युवा थे, तो हमें वो एक अलग ही खुशी होती थी कि रेडियो में जा रहे हैं प्रोग्राम देने, हमें एकदम बिल्कुल करेक्ट बोलना है,
0: जी
1: अच्छा बोलना
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: पूरी पब्लिक आपको सुन रही है।
0: सुन रही है। अच्छा ममता जी, आप इतने वर्षों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, आप युवाणी कार्यक्रम से जुड़ी थी और
1: बिल्कुल
0: आज आप हमारे अपने कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, यानी इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हो रही है और ये बुजुर्गों का कार्यक्रम है, तो आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्योंकि इतने वर्ष हो गए, तो तब का आकाशवाणी और आज के आकाशवाणी में आप क्या फर्क महसूस कर रही हैं?
1: सच कहूँ तो मैं जब वैसे प्रवेश की, अगर सच कहूँ तो अपनी साझा करना चाहती हूँ कि जब से मैं प्रवेश की इस बिल्डिंग में, तो मुझे एक अपनापन सा फील हुआ यहाँ
0: अच्छा
1: पे,
0: जी
1: बहुत अपनापन सा फील हुआ। और टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स बदल गया है वो,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन लोग तो वही हैं,
0: वही हैं,
1: पुराने
0: और
1: लोग हैं,
0: कार्यक्रम
1: भी वही
0: वही है,
1: हैं,
0: सिर्फ थोड़ी सी रूपरेखा
1: वो बदल गई
0: बदल
1: है
0: गई
1: वो।
0: है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ममता जी, आप लिखने का शौक रखती हैं जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, तो मैं आपका लिखा कुछ सुनना चाहूंगी ताकि हमारे श्रोता भी उसे सुन सकें और आनंद ले सकें।
1: बहुत बढ़िया, चलिए आपकी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगी। तो मेरी एक कविता है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं यादों को ही यहाँ पे ताजा करने का मुझे
0: जी
1: मौका मिला, तो
0: जी
1: एक मेरी कविता है, यादें इस कविता का शीर्षक है,
0: जी बहुत अच्छा।
1: तो मैं आपको सुनाती हूँ ये।

0: वाह, बहुत अच्छा, कितनी अच्छी पंक्ति आपने कही है कि होता है इन बातों का बड़ा असर। ये बिल्कुल सही है, और जो रेडियो से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो और भी सटीक लाइन है कि बातों का असर होता ही है, हम बातें ही करते हैं जिसका असर श्रोताओं पर पड़ता है। और जैसा कि ये कार्यक्रम जो है वो बुजुर्गों का कार्यक्रम है, और आज हमारे बीच आप हैं और जिस तरह से आपने अपनी कविता सुनाई है, तो हम चाहेंगे कि जो बुजुर्ग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो प्रेरित भी होंगे कि अगर वो अपने काम से निजात पा चुके हैं या पाने वाले हैं, तो भी वो इस तरह अपनी रुचि के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में उनकी सकारात्मकता रहेगी और वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ममता जी, आप फुर्सत के क्षणों में क्या करना पसंद करती हैं?
1: फुर्सत के क्षणों में सच कहूँ तो मुझे लिखना ज्यादा पसंद होता है, और लिखने का जहाँ तक हम कभी कुछ ऐसे थॉट आते हैं जो आपको इमिडिएट बहुत अच्छा लगता है, तो
0: जी
1: उन पंक्तियों को मैं एक छोटे से डायरी में नोट कर लेती हूँ,
0: अच्छा
1: फिर बाद में उसको रूपांतरित करती हूँ
0: अच्छा
1: वो।
0: और आकाशवाणी के कार्यक्रम कौन कौन से आप पसंद करती हैं?
1: युवाणी बहुत पसंद है, अब भी बहुत
0: अच्छा
1: पसंद है मुझे,
0: अच्छा
1: और भी
0: क्योंकि शुरुआत
1: कार्यक्रम।
0: आपने उससे
1: हाँ, मुझे
0: की
1: क्योंकि मैं युवाओं को जब सुनती हूँ तो मैं अपने
0: जी,
1: दौर को याद करती हूँ,
0: अच्छा,
1: और मुझे लगता है हमेशा उसमें जीना चाहिए क्योंकि आप उससे
0: हाँ
1: यंग रहते हैं, वो
0: जी,
1: एनर्जेटिक रहते हैं
0: और भी
1: वो।
0: कई कार्यक्रम हैं जो ज्ञानवर्धक हैं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: मनोरंजन भी करते हैं, ज्ञान भी देते
1: हाँ
0: हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम सुनती ही रहती होंगी
1: बिल्कुल,
0: आप। वैसे बहुत पुराने गाने भी बजते हैं आकाशवाणी से, कोई ऐसे गाने भी जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं वो भी आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। तो आपके पसंदीदा गायक या गायिका कौन है जिसे आप सुनना पसंद करेंगी?
1: मुझे लता जी का गाना बहुत सुंदर लगता है।
0: चलिए, आज आप हमारे बीच हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि आपको आपकी पसंदीदा कोई गीत सुनवाएं। तो लीजिए, प्रस्तुत है लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

0: कैसा लगा ये गीत?
1: बहुत बढ़िया, बहुत उनके गाना सुन करके लगा कि आज भी लता जी हमारे बीच में ही हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा ममता जी, आज के दौर में आपको क्या लगता है, जैसे आप जब जुड़ी थी आकाशवाणी से तब लोगों का जो क्रेज था रेडियो सुनने का, वो आज आपको कैसा नजर आता है? एक लंबा अंतराल हो चुका है, आकाशवाणी को आप किस रूप में आज देखती हैं?
1: मुझे लगता है बदलाव समय के साथ जरूरी भी है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो विकास भी रुक जाएगा।
0: जी बिल्कुल,
1: तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और मैं जहाँ तक देखती हूँ कि आज भी बच्चे जुड़े हुए हैं इनसे, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं कलाकृति में आता है ये, तो क्रिएटिव बच्चे आज की डेट में मैं देख रही हूँ, आज की डेट में ज्यादा बच्चे हो गए हैं, उनके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम हैं।
0: लेकिन आप ये जरूर कह सकती हैं कि आज भी आकाशवाणी का क्रेज वैसा ही है, जो लोग आकाशवाणी सुनना पसंद करते हैं वो आज भी उसके श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं।
1: आज भी पसंद करते हैं, हमारे दौर के तो लोग आज भी पसंद करते हैं। और मैं देखती हूँ जैसे मेरा बेटा भी सुनता है, मेरी बेटी भी सुनती है।
0: और रेडियो के साथ ऐसा है ना ममता जी कि आप कहीं भी हैं, कोई भी आप काम कर रही हैं घर में, चाहे वो कपड़े धो रही हैं, चाहे कोई काम कर रही हैं, लेकिन अगर रेडियो बज रहा है तो वो आपके कानों में उसकी आवाज आती रहेगी और आप कार्यक्रम का लुत्फ जो है वो उठाती रहेंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जबकि बाकी जो माध्यम है उसके साथ आपको वहां पे जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकाशवाणी पहले भी लोगों के मनोरंजन और ज्ञान का ख्याल रखता था और आज भी रख रहा है।
1: शिखा जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगा कि इतनी पुरानी आकाशवाणी से जुड़ी व्यक्तित्व हैं आप और आज हमारे बीच हैं और आज के ऐतिहासिक दिन में आपसे मुलाकात हो रही है और आप बातें साझा कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज का हमारे अपने कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: कार्यक्रम हमारे अपने अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। श्रोताओं रात के 8 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष परिचर्चा। कार्यक्रम है आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूँ जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहाँ आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहाँ मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया। हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तोता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
2: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय है, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो

0: सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स। विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है। आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है। यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ टीआरपी की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया, यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी टीआरपी की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है, या पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे, क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था, क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्र लोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साथ। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलियान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु

0: ऐसे हुई तो उस जमाने में न्यूज एजेंसीज फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कंफर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
2: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, उस समय भी ऐसा होता था। पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल रेडियो के चैनल से चाहे वो टीवी के चैनल से उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
3: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
2: हमारे आकाशवाणी में आज वो स्टूडियो है
3: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे। इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा की बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा। खास तौर पर इसलिए

0: कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं। महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न खटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो, या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से, हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवा अवस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनो।
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान पर

0: होता है,
1: बिल्कुल.
0: तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है. और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था. हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे. एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
1: कवियों जी हो, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा हो,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे. तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद. और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे. जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं. गीत संगीत तो सुनते ही थे. और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा. लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले. हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था. और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी. तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है. तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता. ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है.
1: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ. और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को. और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर. मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे, उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया. तो वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है. तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ. और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की, तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा. मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था. उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे, खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था. लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेटल रिकॉर्डर हो जाता था, वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था. लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी. डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते. कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं. तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे. तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है. पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया. विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे. और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर. हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे. और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी. और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए, टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है। आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो हमारे सामने है हमारे हाथ में है तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर श्रोता भी चल रहे हैं आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे इतना भारी होता था तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में इसकी पहुंच को लोगों तक और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
3: देखिए आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल
3: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना उसका सम्मान करना वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया। उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने से पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्यता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा वो झांकियां क्या होगी उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता तो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ आप बताइए अपने नाम के साथ।
4: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक
2: मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर परिवारिक बारी को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय तंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए।

0: के युग में
1: जी। चलो सर,
0: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है। ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
2: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, रंडल साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पर जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
1: और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
3: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सरवाणी से हुई। मैम, मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
3: सर, ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं, आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
2: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था, उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बना जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
2: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है। महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर के चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो बैंक के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने से कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे हैं। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
0: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासकर समाचारों के प्रति।
0: जैसे जैसे समय बदलता गया, तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो रेडियो,
0: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी, कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते, अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
3: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
3: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है, आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
5: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
6: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से। आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
6: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का भी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बन ने, कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
7: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
8: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार

0: और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: इसे समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
3: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
4: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध

0: हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
6: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग, रोग पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान

भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था। केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना, चित्र रखना है तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह के खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पर उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित किया जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और

0: हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी
1: हो जी। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम
1: जी।
2: प्रणाम
1: जी।
0: नमस्कार नमस्कार जी।
2: सर जी मेरा कुछ जिज्ञासाएं उत्सुकताएं हैं उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की क्रॉप रोटेशन की उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान गेहूँ मक्का ज्वार बाजरा दलहन तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी खरीफ और जायद कालीन इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: ब्रह्मज्योति जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं कुछ ऊपर से खाद लेती हैं और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है। दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं। और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है। और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं गन्ने की खेती कर सकते हैं और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं कर सकते हैं डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं। और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार में उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है ज्यादातर किसान भाई एक या दो या ज्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है लेकिन क्या है ना पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है और वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी क्या है ना हमारी ज्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे तो वहां पे क्या है ना एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है
1: हो जाती।
3: और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: डॉक्टर आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से राकेश जी।
4: जी नमस्कार। मैं राकेश
1: जी
4: राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं एप्पल के बाग
1: जी।
4: तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है। ये मेरा प्रश्न है
1: डॉक्टर मीना।
3: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया वो क्या है ना ज्यादातर आपकी मिट्टियां अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज्यादा हो गई तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है जिंक है ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है कई बार डेफिशिएंट भी होता है। मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है और इसकी कमी कमी बहुत ज्यादा है। और किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा,
1: तो सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी, है जो किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
5: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
5: जी, हम योगेश झांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
5: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
0: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के इसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूंगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीजें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूंगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो।
6: हेलो
1: जी अनिल जी।
6: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
0: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं चाहे उसे केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
7: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
7: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले तो मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है, तो आपको बॉर्डर पहले 2 मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग कुएं जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी सीजनल फसलें जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है, तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है तो उसका लाभ जरूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का, उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
3: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं, और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष या हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में। डॉक्टर
0: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक खाद भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है, तो हमें समय समय पे इसका उपयोग करना चाहिए। और अगर हम वो उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक आर्मी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें तो ये हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से हम गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जैविक कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जिनके माध्यम से दे सकते हैं, या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाएं। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है, तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
8: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
8: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
8: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक स्मट एक गेहूँ में बीमार वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको प्रौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
9: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
9: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजातीय लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
3: जैसे इंद्रबान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भाग है तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है। और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: वहाँ पे ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहाँ से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1800 1551
1: जी।

0: 1551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1801189 89। तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपको यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 01125841670। ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ। खासकर अगर हम हिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकल इरीगेशन से और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी, हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी
2: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी
1: जी,
2: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछें।
2: जी जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या है ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई या अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ही सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें यह भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी, और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझे, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
3: नमस्कार।

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिए बस कुछ ही पलों में।

कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों, जब आप और हम करते हैं एक दूसरे से अपने मन की बात। कभी आपके स्वास्थ्य की बात, कभी रोजी रोजगारों की, और कभी साझा करते हैं देश दुनिया की बातें, देश दुनिया की खबरें, और हाँ आपके पसंद, आपके मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर। चाहे दूरी कितनी भी हो, बस स्विच ऑन करते ही हम और आप हो जाते हैं एक दूसरे के करीब इस रेडियो के जरिए।

सुरों और शब्दों का ऐसा संगम जिन्हें फिल्मों से चुने गीतों के जरिए हम आपके लिए संजो लाते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। कोशिश होती है आपके मनोरंजन की, आपके पसंदीदा गीतों के जरिए आपके दिलों तक पहुंचने की, क्योंकि ताल पर जब जिंदगानी चलती है ना, तब सफर सुहाना हो जाता है।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आपने सुना रिफ्यूजी फिल्म का ये गीत। बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत अन्नू मलिक ने बनाई थी। दोस्तों, आकाशवाणी संचार का सबसे सस्ता और भरोसेमंद साधन है और इसी कारण आकाशवाणी से फिल्म संगीत हो या गीत संगीत का प्रसारण, कई सारे ऐसे विषय होते हैं जिनसे लोगों को रूबरू कराना या जानकारी देना संगीत के माध्यम से आसान और प्रभावी होता है। इसीलिए गीतकारों ने कई ऐसे गीत लिखे जो गंभीर विषयों या समस्याओं पर आधारित थे और आकाशवाणी इन गीतों को बार बार प्रसारित कर जन जन के बीच चेतना का काम किया है। ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना है यादगार फिल्म का ये गीत। बोल लिखे थे वर्मा मल्लिक ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने बनाई थी।

0: हमारा दिल है।
1: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आपने सुना गुलामी फिल्म का ये गीत। शब्द रचना गुलजार के थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे उस्ताद विलायत खान का सितार वादन, राग था बिहागड़ा। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।